0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप, शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं हरिओम शरण एवं साथियों के स्वर में।

इस भक्ति गीत के साथ ही समर्पण का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे तापसी चक्रवर्ती। सुबह 7 समय होगा कार्यक्रम जोहार चैबासा का। प्रातः 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। माटी की महक, लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कुरमाली लोकगीत। कलाकार होंगे लालू महतो एवं साथी। सुबह 9 विविधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन श्रोता सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। 10:30 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम पुनः प्रसारित किए जाएंगे दोपहर 1:20 पर। 2:55 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। 3 बजे से पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 4 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:02 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 5:02 पर कार्यक्रम विवरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। शाम 5:05 पर गुलदस्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए गए चंद फिल्मी गीत। 5:30 पर किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

बांग्ला कार्यक्रम सातरंग का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:02 पर। शाम 6:30 पर संथाली कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इसके तुरंत बाद जिले में आजकल का प्रसारण किया जाएगा। 7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। रात के 8 बजे हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

रात के 10 बजे आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं तापसी चक्रवर्ती।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी तापसी चक्रवर्ती। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।

जोहार चेबासा कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म का नाम है उपहार।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आंधी फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

त्रिशूल फिल्म के इस गाने के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं आशा भोसले और मन्ना डे के युगल सर में तीसरी कसम फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की गल स्वर में ताजमहल फिल्म का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: 4-2, 4-2।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा अल नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआड़ा धारा बोले रुआड़ तबन में अल परिवार से मतलब पूरा ये
4: मोर नाम मंगल राय को गाँव बारीगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ मना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
6: तुम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता तमसा भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुर मिना अन्य जापा मेरे तपा मेरे वहाँ बिठा मिका
7: अन्य तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी बुरी ने बागिया तोड़ के दोनों से यार पी कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिना ही रो जिता हुरा रे मिना ही रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया न तुम ते ही ना मिल आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: जोहार चयभाषा कार्यक्रम में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: कभी कहीं मैं खो जाऊं, कहां ढूंढे कहां जाए मेरा पता, फिर तू किससे पूछे
1: किसके जी?

जिगरी दोस्त फिल्म के इस गाने के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं सुहाग फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की।

आशिकी फिल्म के इस गाने के साथ ही जोहार चैबासा का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चैबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत

0: नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
7: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच

0: developed as hubs for tribal welfare. Mr. Shah said these service centers will provide facilities related to banking, Aadhaar, ration cards, skill training and all welfare schemes of the central and state government. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
1: Government has debunked a claim circulating online alleging that the government is going to issue gold bonds to temples in exchange for temple gold reserves. The fact-check unit of the Press Information Bureau stated that the claim is fake. It added that the government has not made any such statement. The PIB has advised citizens to stay away from fake claims and always refer to official sources only for verified information. U.S. President Donald Trump has said that he is holding off a planned military strike on Iran after requests from the leadership of Qatar, Saudi Arabia and the UAE, as serious negotiations are now underway. In a post on Truth Social, the U.S. President said he had been asked by the Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud and UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan to postpone the strike which was scheduled for today. President Trump said a deal acceptable to the United States and countries across West Asia could soon be reached. He added that the proposed agreement would ensure that Iran does not possess nuclear weapons. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in Chennai last night to secure a playoff berth. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs, with Karthik Sharma being the highest scorer with 44 runs. In reply, Sunrisers Hyderabad overhauled the target, losing 5 wickets in 19 overs, riding on Ishan Kishan's 70 and Henrik Klassen's 47 runs. Ishan Kishan was declared the player of the match. Today, Rajasthan Royals will face Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. The India Meteorological Department IMD has forecast severe heat wave conditions today at places over Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Hot and humid weather conditions are expected to persist during the day over coastal Andhra Pradesh and Odisha. Rajasthan, Vidarb and West Uttar Pradesh are expected to experience hot night conditions tonight. The weather agency also forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Thunderstorms and lightning are likely today over Bihar, Gangetic, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Telangana, Jammu and Kashmir and some parts of Northeast India. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
2: Thank you, Abhishek. Modi, the first Indian Prime Minister to visit Norway in more than 4 decades, is covered prominently by the dailies. Prime Minister urges peace in Ukraine, West Asia leads the pioneer. While the statesman leads with Prime Minister Modi, pushes tech, green ties in Norway. The Indian Express carries the picture of PM Modi receiving Norway's highest honour. The caption under the picture reads, PM Narendra Modi with King Harald V as he is conferred the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit in Oslo on Monday. The Economic Times, in its editorial, Bringing It All Back Home, writes that the repatriation of 1,000-year-old Chola copper plates from Leiden University during Narendra Modi's visit to the Netherlands last weekend is a welcome assertion of India's proprietorial sovereignty. Excavated between 1687 and 1700 during the Dutch redevelopment of Nagapattinam, the two sets reveal a legacy of royal succession and maritime diplomacy. The return of Chola plates mirrors that of Pipravav, Buddha relic gems and restitution of 657 stolen antiquities from the United States. UPSC to release prelims provisional answers, reports Hindustan Times about the UPSC to release the answer key soon after prelims exams to enhance transparency and uphold the highest standards of, to conduct the examination. Aaron Rai runs over away with PGA Championship, first English-born winner in more than a century, states the pioneer. And finally, India's bullet train dream inches closer to reality. The Financial Express says project is being executed with assistance from the government of Japan. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment and 1 million jobs under India EFTA agreement at Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at the 3rd India-Nordic Summit today. Defense Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College, Sandeep Ghosh, for financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashvani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा, झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, ईंधन भंडार की लगातार हो रही निगरानी। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश की है संभावना, किसानों से खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नए समाचार पत्र का किया लोकार्पण, कहा मीडिया को जनहित के मूल्यों के साथ करना चाहिए कार्य। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को सीमा सुरक्षा बल में डीआईजी के पद पर किया गया नियुक्त, आदेश जारी। और रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।
4: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
3: पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक डॉक्टर प्रदीप पॉल ने कहा कि झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित सभी आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य और निर्बाध बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की आपूर्ति श्रृंखला टर्मिनल, डेपो और रिटेल आउटलेट स्तर पर सुचारू रूप से कार्य कर रही है तथा ईंधन भंडार की लगातार निगरानी की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और राज्य भर में इसकी उपलब्धता सामान्य है। तेल कंपनियों ने लोगों से घबराकर खरीदारी नहीं करने और ईंधन उपलब्धता संबंधी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद रांची की मेयर रोशनी खलको ने आम लोगों से पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करने को कहा है। साथ ही उन्होंने देश हित में अभी सोने की खरीदारी नहीं करने की भी अपील की है।
5: मैं एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि अपने घर में जो हम लोग बचत करेंगे वो अपने लिए होगा, उसी तरह से देश के लिए जो हम बचत करेंगे वो देश के लिए होगा, चाहे वो पेट्रोल के रूप में हो, चाहे वो डीजल के रूप में हो, चाहे वो आप सोना के रूप में हो। आज जो बचत होगी वो हमारे देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है।
3: राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्री ने किसानों से सही योजना और आधुनिक खेती तकनीक से इस परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करने की अपील की।
6: जहां भी मई जून में बारिश हो तुरंत खेतों की अच्छी तरीके से जुताई कर ले, मेड़ को मजबूती से बनाए ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे, धान पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहे। वैसे फसल जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है जैसे मूंग, सोयाबीन, मड़ुआ, अन्य फसलों को अपनाए।
3: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्षेत्र में सड़क और पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क धंसने और पत्थरों के टूटने की घटनाएं विकास कार्यों की जमीनी सच्चाई की उजागर करती है। उन्होंने साहिबगंज उपायुक्त से मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक नए समाचार पत्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत है और मीडिया समाज की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता की जिम्मेदारी और बढ़ गई है तथा मीडिया को सत्य, नैतिकता और जनहित के मूल्यों के साथ कार्य करना चाहिए।
7: जुड़ाव जो पत्रकारिता के साथ, जो अखबार के साथ होता है, बहुत ही इमोशनल भी होता है, बहुत बदलाव का एक जरिया भी होता है, एक क्रांति का भी एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक कह लें, इसकी भी भूमिका में ये रहता है।
3: इस समारोह में मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, मुख्य संपादक अम्बरीश श्रीवास्तव मौजूद रहे। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को केंद्र सरकार में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 21 मई तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। राजधानी रांची के थरपकना स्थित यूनियन क्लब कराटे सेंटर में शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक दिवसीय विशेष कराटे प्रशिक्षण सह बेल्ट ग्रेडेशन शिविर का आयोजन किया गया। बेल्ट ग्रेडेशन में सफल प्रतिभागियों को बेल्ट प्रदान किया गया, जबकि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि श्वेतांग सेन और विशिष्ट अतिथि राम चटर्जी ने मेडल देकर सम्मानित किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड में नियुक्तियों का दौर, देश में पर्चा लीक। प्रभात खबर ने झारखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जिसका शीर्षक है 59 केस के रैयतों को 9 करोड़ से ज्यादा मिलेगा मुआवजा। दैनिक जागरण ने खूंटी में किशोर किशोरी की हत्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने 22 से 26 मई के बीच मॉनसून के केरल पहुंचने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा, झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, ईंधन भंडार की लगातार हो रही निगरानी। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश की है संभावना, किसानों से खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नए समाचार पत्र का किया लोकार्पण, कहा मीडिया को जनहित के मूल्यों के साथ करना चाहिए कार्य। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को सीमा सुरक्षा बल में डीआईजी के पद पर किया गया नियुक्त, आदेश जारी। और रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

FMK 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक।

माटी की महक कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं लालू महतो एवं साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आप सुन रहे थे कुरमाली लोकगीत, कलाकार थे लालू महतो और साथी। इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: श्रोताओं, इस विविधा कार्यक्रम में हम हर दिन हर रोज कुछ नई नई जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम चर्चा के माध्यम से जानेंगे भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। वे एक सरल, ईमानदार और महान राजनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुआ करते थे। उनका जमीन देश सेवा, सादगी और लोकतांत्रिक मूल्य का प्रतीक था। उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और जनता के प्रिय नेता बन गए। श्रोताओं, नीलम संजीव रेड्डी जी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 19 मई सन 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के इल्लूर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम नीलम चिनप्पा रेड्डी था। वे बचपन से ही मेधावी और देशभक्त थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास में प्राप्त की। श्रोताओं, नीलम संजीव रेड्डी महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बहुत ही कम आयु में ही भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और साथ ही साथ वे जेल भी गए। देश की आज़ादी के लिए उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्रोताओं, भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। बाद में वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने और अपनी निष्पक्षता के कारण बहुत सम्मानित हुए। सन 1977 में वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। वे भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध रूप से चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखा। श्रोताओं, नीलम संजीव रेड्डी सादगी पसंद व्यक्ति थे। वे ईमानदार, अनुशासित और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने हमेशा जनता की भलाई को प्राथमिकता दी। उनका जीवन हमें सच्चाई और सेवा का संदेश देता है। श्रोताओं, 1 जून सन 1996 को उनका निधन हो गया। देश के महान नेता को हमने खो दिया, लेकिन उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राजनीति के आदर्श व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने कार्यों से देश को नई दिशा प्रदान की। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। श्रोताओं, अभी हम चर्चा के माध्यम से जान रहे थे भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो तो बेटा क्रांति बेसरा अले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआ धरा बोले रुआ में अले परिवार से मतलब पूरे ये
3: मोर नाम मंगल राय को गाँव बारीगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात होते अखन बात हो जाए है
5: उत्तम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा ऐसा करना ऐसा दुख रहा मिना ना यापा मैं रियो तपा मैं रियो वाह बेटा मिका
6: अन्या मतम दो बुंबई कोड़ा पटन मतम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन मतम कितमई कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमा दुरुगम गई यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना ही रो जिता हुरा रे मिना ही रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का अले आया न तुम कहीं ना मिल आप ही लेता ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। श्रोताओं, आज हिंदी साहित्य के महान लेखक, निबंधकार, आलोचक और महान विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। वे हिंदी इतिहास के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। तो आज इस विविधा कार्यक्रम में हिंदी के कालजयी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये वार्ता सुनते हैं। वार्ताकार हैं देवानंद तिवारी।

डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक थे। वे उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, लेखक, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता थे। साहित्य के इन सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और विशिष्ट कर्तव्य के कारण वे विशेष यश के भागी हुए। उनका व्यक्तित्व गरिमामय, चित्तवृत्ति उदार और दृष्टिकोण व्यापक था, जिसकी छाप उनकी प्रत्येक रचना में देखी जा सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके प्रपितामह ने काशी में कई वर्षों तक रहकर ज्योतिष का गंभीर अध्ययन किया था। द्विवेदी जी के पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते थे, और माता ज्योतिषमती प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक द्विवेदी को संस्कृत के अध्ययन का संस्कार विरासत में ही मिल गया था। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया और सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उसी वर्ष वे प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 1950 ईस्वी तक वे शांति निकेतन में हिंदी भवन के डायरेक्टर के पद पर काम करते रहे। शांति निकेतन में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ संपर्क में आने पर नए मानवतावाद के प्रति उनके मन में आस्था की प्रतिष्ठा हुई। वह उनके भावी विकास में सहायक बनी। शांति निकेतन में द्विवेदी जी को अध्ययन चिंतन का निर्बाध अवकाश मिला। वास्तव में वे वहाँ के शांत और अध्ययनपूर्ण वातावरण में ही द्विवेदी जी के आस्था, विश्वास, जीवन दर्शन आदि का निर्माण हुआ, जो उनके साहित्य में सर्वत्र प्रतिफलित हुआ है। आचार्य क्षिति मोहन सिंह, विधुशेखर भट्टाचार्य और बनारसीदास चतुर्वेदी की निकटता से भी उनकी साहित्यिक गतिविधियों में अधिक सक्रियता आई। सन 1950 ईस्वी में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर होकर वहां चले गए। इसके एक वर्ष पूर्व सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनकी हिंदी की महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1955 ईस्वी में वे प्रथम ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के सदस्य चुने गए। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने उनकी विद्वत्ता और साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 1958 ईस्वी में वे नेशनल बुक ट्रस्ट के सदस्य बनाए गए। वे कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के उपसभापति व संपादक रहे। उनकी मृत्यु सन 1978 ईस्वी में हुई। द्विवेदी जी मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के आलोचक थे, फिर भी साहित्य को एक अविच्छिन्न विकास परंपरा में देखने पर बल देकर द्विवेदी जी ने हिंदी समीक्षा को नई दिशा दी। साहित्य के इस नैरंतर्य का विशेष ध्यान रखते हुए भी वे लोक चेतना को कभी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते। वे मनुष्य की श्रेष्ठता के विश्वासी थे और उच्च कोटि के साहित्य में इनकी प्रतिष्ठा को अनिवार्य मानते थे। संस्कार जन्य क्षुद्र सीमाओं में बंध कर साहित्य ऊंचा नहीं हो सकता, अपेक्षित ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उसे मनुष्य की विराट एकता और जिज्ञासा को आयत्त करना होगा। द्विवेदी जी ने चाहे काल विशेष के संबंध में लिखा हो, चाहे कवि विशेष के संबंध में, उन्होंने अपनी आलोचनाओं में यह बराबर ध्यान रखा कि आलोच्य युग या कवि ने किन श्रेयस्कर मानवीय मूल्यों की सृष्टि की है। कोई चाहे तो उन्हें मूल्यान्वेषी आलोचक कह सकता है, पर वे आप्त मूल्यों की अधिकता में विश्वास नहीं करते। उनकी दृष्टि में मूल्य बराबर विकसनशील होता है, उसमें पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती चिंतन का मिश्रण होता है। संस्कृत अपभ्रंश आदि के गंभीर अध्येता होने के कारण वे साहित्य की शुद्ध परंपरा का पालन करते हुए विकासशील मूल्यों का सहज ही आकलन कर लेते थे। हिंदी साहित्य की भूमिका उनके सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक है।
जिसमें साहित्य को एक अविच्छिन्न परंपरा तथा उसमें प्रतिफलित क्रिया प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा गया है। नवीन दिशा निर्देश की दृष्टि से इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व है। अपने फक्कड़ व्यक्तित्व, घर फूंक मस्ती और क्रांतिकारी विचारधारा के

कारण कबीर ने उन्हें विशेष आकृष्ट किया। हिंदी साहित्य का आदि काल में द्विवेदी जी ने नवीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर जो शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उससे हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनः परीक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नाथ संप्रदाय में सिद्धों और नाथों की उपलब्धियों पर गंभीर विचार व्यक्त किया है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, जो आलोचनात्मक उतनी नहीं जितनी भावात्मक। द्विवेदी जी के निबंध हिंदी निबंध साहित्य की मूल्यवान उपलब्धि है। द्विवेदी जी के व्यक्तित्व में विद्वत्ता और सरसता का, पांडित्य और गंभीरता और विनोदमयता का, प्राचीनता और नवीनता का जो अद्भुत संयोग मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। अपने निबंधों में वे बहुत ही सहज ढंग से अनौपचारिक रूप में नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, अशोक के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, कूटज आदि की चर्चा करते हैं। उनके निबंधों का पूर्ण रसास्वादन करने के लिए जगह जगह बिखरे हुए सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों को जानना बहुत आवश्यक है। इन संदर्भों में उनकी ऐतिहासिक चेतना को देखा जा सकता है। उनमें अतीत के मूल्यों के प्रति सहज महत्व है, किंतु नवीन के प्रति कम उत्साह नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी का अपने ढंग का असामानांतर उपन्यास है, जो अपने कथा शैली के कारण सहृदय द्वारा विशेष रूप से समादृत हुआ है। यह हिंदी उपन्यास साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि है। इसके माध्यम से अपने जीवन दर्शन के विविध पक्षों को उद्घाटित करते हुए उन्होंने इसे वैचारिक दृष्टि से भी विशिष्ट ऊंचाई प्रदान की है। हर्षकालीन जिस विशाल फलक पर बाणभट्ट को चित्रित किया गया है, वह गहन अध्ययन तथा गत्यात्मक ऐतिहासिक चेतना की अपेक्षा रखता है। कहना न होगा कि द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के निर्माण में इस ऐतिहासिक चेतना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि वह समाज और संस्कृति के विविध आयामों को, उसके संपूर्ण परिवेश को एक आयविक इकाई में सफलतापूर्वक बांधने में समर्थ हो सके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सभी रचनाओं में इनकी भाषा बहुत ही सरल और मनमोहक है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ने से काफी आनंद और उत्साह मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी, संस्कृत, बंगला और उर्दू भाषा तथा इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में भी लेख लिखे हैं। वे एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। उनकी भाषा तत्सम प्रधान साहित्यिक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रदर्शन को कहीं भी स्थान नहीं दिया। उनका निबंध साहित्य हिंदी में ही नहीं अपितु समस्त साहित्य में अपूर्व है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, समाज का यथार्थ चित्रण, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था, प्राचीन और नवीन का समन्वय, ईश्वर में आस्था और मानवतावादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं। वे एक मानवतावादी आलोचक थे। वे मनुष्य की समस्त सामाजिक उपलब्धियों को साहित्य की सामग्री मानते थे, किंतु वे साहित्य के मूल तत्वों के साथ उसका वैज्ञानिक संबंध जोड़ते हैं। वे आदर्शवादियों या उपयोगितावादियों की तरह ऊपर से आरोपित नहीं करते। आचार्य द्विवेदी मानव मात्र को जोड़ने वाली साहित्य की आराधना को श्रेयस्कर मानते थे। विश्व साहित्य को बृहत्तर मानवीय चेतना का अंकुरण मानते थे। अनामदास का पोथा में भी नव मानवतावाद के रूप में उनका यह स्पष्ट रूप प्रकट हुआ है। विश्व चेतना के प्रति सहानुभूति तथा मानव सेवा, द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में जिस धर्म दर्शन साधना को अपनाया है, वह मनुष्य के सामाजिक जीवन में साधक है। क्योंकि मनुष्य का कोई भी धर्म दर्शन, भक्ति या साधना, यदि मनुष्य के सहज सामाजिक जीवन प्रवाह अथवा मनुष्यता की वृद्धि में सहायक होती है, तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर साहित्य,

0: हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, वाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता, मेघदूत एक पुरानी कहानी, विचार और वितर्क, पृथ्वीराज रासो, कालिदास की लालित योजना जैसे महान ग्रंथों की रचना कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि द्विवेदी जी मानवतावाद के शक्तिशाली समर्थक थे। वे मानवता के सच्चे पुजारी थे। उनका साहित्य किसी वर्ग विशेष के लिए ना हो करके समष्टि के लिए था। वे अपने में सभी को समेट लेते हैं। निस्संदेह मनुष्य केंद्रित दृष्टिकोण द्विवेदी जी को मानवतावादी साहित्यिक चिंतन के रूप में स्थापित करती है। सर्जन की सरसता, चिंतन की प्रखरता एवं मानवतावादी जीवन की दृष्टि की उदारता आदि के द्वारा साहित्य की पुष्टि करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के इतिहास में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में माना जाएगा। धन्यवाद।
1: हिंदी के कालजयी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। वार्ताकार थे देवानंद तिवारी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं बिरजारा फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की।

इस गीत के साथ ही विविधा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से हमें विदा दें। नमस्कार।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दीवाना मस्ताना फिल्म का ये गीत, उदित नारायण, विनोद राठौर और अलका याग्निक के स्वरों में।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: रसरंजन कार्यक्रम में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं गोपी किशन फिल्म का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग, उमंग।
2: नमस्कार।

0: मैं हूँ विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
0: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए मैं। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
0: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
0: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
0: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमृषि, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
0: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओ, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास घास क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी।

0: चांदनी धब्बे।
1: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
2: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
3: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: नहीं
5: लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।

0: मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
1: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
0: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गाँव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
8: नहीं करने देंगे।
9: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था के ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
0: गौरमा, गौरमा,
5: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
0: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
5: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
0: गौरमा,
5: हाँ?
0: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
5: क्या?
0: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
5: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
9: हाँ गौरमा,
10: हाँ गौरमा,
5: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
4: बिल्कुल,
5: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
9: हाँ,
10: हाँ,
9: हम सब तैयार हैं।
10: नहीं कटने देंगे,
0: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
5: ये है जंगल के उपकार।

0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
1: अरे क्या कर रहे हो?
2: भूख के ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
1: अरे भाई कौन है? रुको, इस हम चुप जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
2: सुनो, आगे बढ़ो।
1: अरे कहां से आ
2: रहे हो? इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
1: पेड़ों से चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
4: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
1: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
2: तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
0: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
5: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं दिन के 10:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दोनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और आज मैं हूँ आपके साथ आभा, और मेरे साथ है
1: विश्वजीत।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारा जोहार नमस्कार।
1: और आभा जी, कैसी हैं आप?
0: मेरी आवाज से तो पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी मतलब खराब है ना।
1: मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन ये खराब हुआ क्यों? ये तो हमें जानकारी चाहिए ना, और हमारे श्रोताओं को भी जरूर देना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि मौसम बदल रहा है। अब बारिश के बाद, जैसे ही धूप के बाद कड़ी बारिश होती है और उसके बाद मौसम में बदलाव होता है, तो ऐसे में हम अगर रेडियो में काम कर रहे हैं और तो हमारी आवाज की सुरक्षा भी हमें खुद को ही लेनी है।
0: बिल्कुल, इसलिए ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
1: तो जोहार आज के कार्यक्रम की आप लोग शुरुआत करेंगे
0: एक अच्छे से सुविचार के साथ।
1: हाँ, क्योंकि हर एक शुभ विचार जो कि हमारे अंदर और हमारे जीवन में बहुत प्रभाव लेके आता है, कहते हैं जिनसे मिलकर मन स्थिर हो जाए, जिनकी उपस्थिति में सोच सहज हो और भीतर कोई खिंचाव ना हो, वही सही साथ है। सही संग हो जो सिर्फ हंसी या बातचीत दे, बल्कि वो है जो हमारे भीतर की उथल पुथल को शांत कर दे। जहां दिखावा नहीं, दबाव नहीं और खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे संबंधों में शब्द कम और अनुभूति गहरी होती है।
0: और जब हमारा मन स्थिर रहता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, भावनाएं संतुलित रहती हैं और जीवन अपनी लय में चलने लगता है। इसीलिए लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनके साथ अपने मन की स्थिति से पहचानिए, क्योंकि सही साथ वही है जो आपको अपने भीतर से जोड़ दे।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और जैसे कि आवा जी, मौसम का मिजाज ना बिल्कुल बदला हुआ है। रांची की अगर बात करें, रांची तो अपने मौसम के लिए और अपनी हरियाली के लिए ही जाना जाता है। और अगर रांची के अब के मौसम की बात करें तो अगले 24 आज से लेके 24 तारीख तक, यानी कि 24 मई तक आंधी बारिश का जो येलो अलर्ट आया है ना, वो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दिया है, क्योंकि मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने का आसार है। और ऐसे में 20 मई को आंधी बारिश का आसार सबसे अधिक नजर आ रहा है। और पलामू और गढ़वा को छोड़कर बाकी हमारे जितने भी झारखंड के जिले हैं, उन सभी जिलों में ये प्रभाव देखने को मिल सकता है।
1: कहने का मतलब ये है कि मौसम में फिर से बदलाव होगा, ऐसे में आप सभी अपना ख्याल रखें। जैसा कि मेरी तबीयत जो है मौसम की वजह से ही खराब हुई है ना।
0: बिल्कुल, झारखंड में अगले कई दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा, तो ऐसे में आपको मौसम के बदलाव के साथ साथ आपको भी कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, और मौसम के अनुसार ही आपको ढलने की जरूरत है।

0: शास्त्री जिया पियरे क्रिस्टिन ने सेंटीग्रेड तापमान पैमाना बनाया था, जो आज भी तापमान मापने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे आज हम सेल्सियस के नाम से जानते हैं। विज्ञान की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने तापमान मापने की तारीख में क्रांति ला दी थी।
1: और 1848 में आज ही के दिन दुनिया का पहला डिपार्टमेंटल स्टोर न्यूयॉर्क में खोला गया था। और बात करें 19 मई 1961 की, तो गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ भारत में संयुक्त मोर्चा आंदोलन तेज हुआ था। और आज ही के दिन 2002 में पूर्वी तिमोर चार सदियों की दास्तां के बाद 21वीं सदी के पहले नए राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।
0: आज के दिन यानी कि 1934 को फ्रांस प्रसिद्ध भारतीय रस्किन बॉन्ड ने भी इस दुनिया में कदम रखा था, जो अंग्रेजी भाषा के सबसे लोकप्रिय भारतीय लेखकों में से एक हैं और विशेषकर बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ लिखा, जो एक किशोर अंग्रेज लड़के की भारत में जिंदगी पर आधारित था। यह उपन्यास 1957 में प्रकाशित हुआ। 1992 में माफ कीजिएगा, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1999 में पद्मश्री और वर्ष 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है उन्हें।
1: और आगे जानते हैं, और आज ही के दिन 19 मई 1913 में नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ था, जो भारत के छठे राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनेता के रूप में उनकी पहचान थी। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला, और आपको बता दें वे अपने कार्यकाल के दौरान भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और विश्वजीत, अगर हम बात करें इतिहास की, तो जन्म के बाद आइए जानते हैं कि किन हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो भारतीय उद्योग जगत के पितामह कहे जाने वाले जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा का निधन 19 मई 1904 को

0: जुआ रांची में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और निश्चित रूप से आप हर तारीख अपने भीतर अपने अतीत को और कई कहानियों को समेटा हुआ है। और आज का दिन यानी कि 19 में भी विश्व और भारत के इतिहास में कई अहम घटनाओं का साक्षी रहा। यानी कि मैं बात क्या चीज का करने वाला हूँ ये तो आप पता
1: बिल्कुल आप बात कर रहे हैं इतिहास की,
0: इतिहास की। तो यहाँ इतिहास के पन्ने को पलटने का वक्त आ चुका है। तो आज ही के दिन 1743 को फ्रांसीसी खगोल

प्रसाद द्विवेदी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। वे हिंदी साहित्य के एक युग स्टार थे जिन्हें उत्कृष्ट उपन्यास जैसे वाणभट्ट की आत्मकथा और गहन आलोचनात्मक लेखन के लिए जाना जाता है। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला भाषाओं के विद्वान थे। वक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था और सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

0: जोहर रांची कार्यक्रम आप सुन रहे थे और हवा बातों ही बातों में और बहुत मधुर गीतों के साथ वक्तों का पता ही नहीं चलता ना।
1: और हमारे पास आज समय की भी कमी है।
0: हाँ, समय की भी कमी है और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो ऐसे में हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं, तो ऐसे में जिंदगी में हमेशा आप उम्मीद की रोशनी जलाए रखिए और अपनों के साथ खुशियां बांटते रहिए। इसी संदेश के साथ जोहार रांची कार्यक्रम से हमें यानी कि विश्वजीत और
1: आभा को दीजिए अनुमति। जोहार, नमस्कार, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं और अब आइए सुनते हैं स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रांची के पूर्व प्रसारण कर्मी और वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश देव कुलिश से मीनाक्षी शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति प्रशांत कौरव की है।

स्वर यात्रा के 90 वर्ष आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के इस उत्सव में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपके दोस्त मीनाक्षी। साथियों, 90 वर्षों की यात्रा कोई कम समय नहीं होता। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी ने कई सुनहले समय के साथ अपनी अनवरत यात्रा की है। समाचार, संगीत, संवाद, साक्षात्कार, ज्ञान विज्ञान के साथ आकाशवाणी की पहुंच करोड़ों घर तक और करोड़ों हृदय तक होती रही है। आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस शानदार यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, साक्षात्कारों की श्रृंखला के माध्यम से हम उन लोगों की बातों को, उन लोगों के एहसासों को, उन लोगों के यादों को और भावनाओं को आप तक संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में आकाशवाणी की इस गौरवशाली यात्रा के सहयात्री रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमें आमंत्रित किया है श्री प्रकाश देवकुलश जी को, जिन्होंने आकाशवाणी रांची में अपने पहले कार्यकाल 1989 से 1993 में यहाँ के हिंदी अनुभाग और नाटक अनुभाग को संभाला। जब दूसरी बार ये आकाशवाणी रांची आए, इनका कार्यकाल था 2009 से 2011 का। इस समय हिंदी और नाटक के अलावा इन्होंने कार्यक्रम प्रमुख की भूमिका भी बहुत बेहतरीन तरीके से की। कुछ अविस्मरणीय से पल हैं जो इनके यादों में संजोए गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने आकाशवाणी में महसूस की, कुछ संवेदनाएं हैं जिन्हें याद करते ही अभी भी इनके हृदय में स्पंदन होता है। तो आइए हम इस यात्रा में एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। तो सबसे पहले श्री प्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम स्वर यात्रा के 90 वर्ष में।
1: नमस्कार मीनाक्षी जी, और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। अच्छा लग रहा है कि आज आपने इस खास अवसर पर मुझे आमंत्रित किया है अपने विचार रखने के लिए।
0: सर, जब हम किसी यात्रा पे निकल पड़ते हैं, चाहे वो हमारी काम की यात्रा हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हृदय पटल पर अंकित हो जाती हैं। हमें लगता है कि ये स्वर्णिम समय था जो हमने जिया है। कुछ ऐसे पल आपके जहन में रहे होंगे, कुछ ऐसे कार्यक्रम आपके जहन में हैं जिसकी रूपरेखा अभी तक आपको याद होगी, कुछ परिवर्तन आपने अपने कार्यकाल के दौरान देखे होंगे। तो मैं चाहूंगी हमारे जो सुनने वाले लोग इस समय हमसे जुड़े हैं, थोड़ी चर्चा हम उस कार्यक्रमों की रूपरेखा जो उस समय हुआ करती थी और जो परिवर्तन करने की आपने बड़ी बेहद संजीदगी से जो कोशिश की, उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं।
1: अवश्य अवश्य। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस संस्था में मैंने काम किया, जीवन का लगभग 30-32 वर्ष दिया, आज उस संस्था के 90 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर हम बात कर रहे हैं, ये बहुत खुशी का अवसर है।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम किसी ऐसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। एक सिंहावलोकन है जो हमें दिखाता है कि हमारी यात्रा कैसी रही, इसका स्वरूप कैसा रहा। तो मैं सबसे पहले कुछ उन कार्यक्रमों की चर्चा करना चाहूँगा जो आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले तो थे पर अब नहीं है, ताकि हमारे श्रोता उस कार्यकाल से परिचित हो सके।
0: बिल्कुल, अपने आप को जोड़ सकें
1: कि भाई ये भी एक स्वरूप था। मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो अभी आकाशवाणी में कार्यरत हैं, शायद वे भी इन चीज़ों को न जानते हों कि कुछ बड़ी अच्छी और विशिष्ट परम्परा आकाशवाणी की थी। मैं उसमें से 2-3 की चर्चा करता हूँ।
0: जरूर सर।
1: सबसे पहले तो चूंकि मैं साहित्यिक कार्यक्रम से जुड़ा था तो उसकी चर्चा करता हूं एक कार्यक्रम का। देखिए, अभी एक कार्यक्रम यहां होता है शतदल नाम से, जो कि शायद साप्ताहिक है, हाँ, तो वो तो रांची केंद्र से होता है, लेकिन उस समय शतदल नाम से ही एक हिंदी साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम होता था, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना, रांची, भागलपुर, दरभंगा चारों केंद्रों से होता था। महीने में एक रविवार को एक केंद्र करते थे और इसका प्रसारण चारों केंद्रों से एक साथ होता था। तो ये एक बड़ा ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम था, और चूंकि ये साहित्य का कार्यक्रम था तो मुझे याद है कि जो अपने क्षेत्र के जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वो इस कार्यक्रम में आने के लिए लालायित रहते थे। और जब उनका पार्टिसिपेशन, जब उनका इसमें मौका मिलता था प्रतिभागी के रूप में आने का, तो बहुत ही उनकी खुशी दिखाई पड़ती थी।
0: बिल्कुल, वो रोमांच नजर आता था।
1: और इतना ही नहीं, उस समय जो मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो भी इतना सक्रिय थी, वो मीडिया भी, और वो भी हमारे साथ इस तरह से जुड़ी रही वो, कि हर हफ्ते के उस कार्यक्रम का रिव्यू भी अखबार आता था। तो इस तरह से वो एक बड़ा ही जीवंत कार्यक्रम था।
0: बिल्कुल।
1: और मुझे याद है कि यहाँ से जब मैं रांची में बनाता था, फिर उस समय तो ये अभी तक डिजिटल व्यवस्था तो थी नहीं, टेप में रिकॉर्डिंग होती थी और चारों केंद्रों को वो टेप हम भेजते थे। उसमें कभी यदि देर हो गई, जल्दी पहुंचना है, उसके लिए क्या भागदौड़ मची रहती थी। तो ये एक चीज थी।
0: इसमें भी बहुत सुकून मिलता होगा इस तरह के काम में भी, कि अगर टेप समय पे नहीं पहुंचा तो प्रसारण कैसे, वही बहुत सारी चीजें।
1: मतलब मुझे तो याद है कि एक आध बार ऐसा हुआ है कि कार्यक्रम बनने में विलंब हो गया और अब क्या करें, तो मैं अपने हाथ से लेकर मैं बस स्टैंड जाता था और वहां पर जो है व्यक्तिगत संपर्क से देता था और फिर भागलपुर में बता देता था कि भाई तुम कलेक्ट कर लो। मतलब ये भी कई कई स्थिति आ जाती
0: और ये दर्शाता है कि मतलब एक जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते थे या प्रोग्राम से जुड़े लोग होते थे, उनको कितनी चाहत होती थी कि किसी भी तरीके से मेरा कार्यक्रम वहां तक पहुंच जाए जहां से उसका प्रसारण होना है।
1: तो वो कार्यक्रम जो एक्चुअली जब बंद हुआ तो बहुत थोड़ी सी निराशा हुई थी पूरे पूरे मतलब पटना से जुड़े और दरभंगा से जुड़े जो साहित्यकार थे उन लोगों को थोड़ी निराशा हुई थी। एक दूसरे कार्यक्रम की मैं चर्चा करता हूँ, वो पूरे आकाशवाणी से जुड़ा है, पूरे अपनी हमारी जो संस्थागत जो का जो स्वरूप है। हम लोग हर केंद्र हर वर्ष चार विशेष कार्यक्रम आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष करते थे,
0: मंच पर, खुले मंच पर,
1: खुले मंच पर या किसी बड़े हॉल में, और सभी श्रोताओं को आमंत्रित करते थे। वो चार कार्यक्रम कौन कौन होते थे? एक शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, देश के जो मूर्धन्य संगीतकार हैं वो एक या दो आते थे और दो घंटे का कार्यक्रम होता था। मुझे याद है उसमें विजी जोग आए हैं, उसमें राजन मिश्र, साजन मिश्र आए हैं, ऐसे कई कलाकार उसमें आए। तो एक तो शास्त्रीय संगीत का हो गया, फिर एक दूसरा काव्य सम्मेलन होता था और एक सुगम संगीत का कार्यक्रम होता था और एक लोक गीतों का कार्यक्रम होता था,
0: गीतों गजलों का और फिर लोक संगीत।
1: अभी जो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन ने बिल्कुल उसमें समझिए कि यंग थे जब हम लोगों ने देखा है उनको आते हुए। तो वो ये चार कार्यक्रम लगभग हर केंद्र अपने अपने शहर में करता था।
0: बिल्कुल,
1: ये एक ऐसी विशिष्ट परंपरा थी कि लोगों को इसका इंतजार रहता था। भाई इतने बड़े बड़े कलाकार को सुनने का मौका, उन्हें एकदम सम्मान के साथ आमंत्रित किया जा
0: और
1: रहा है,
0: सामने देखने का,
1: सामने देखने का मौका,
0: सामने देखने का मौका।
1: तो वो परंपरा पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू हो गई। मतलब वो हमारी जो संस्था है आकाशवाणी, वो तो एक्चुअली संस्कृति
0: को बढ़ावा देने,
1: बस इसको बचाने के लिए। और संस्कृति का की जो भूमिका जीवन में है, देखिए एक बड़े चिंतक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भी 1.5-2 साल पहले वो दिवंगत हो गए, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, वो एक समाजवादी और गांधीवादी चिंतक हैं। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि मनुष्यों में हिंसा को त्यागने की कोई अलग से प्रवृत्ति नहीं बनी हुई है, वो संस्कृति की भूमिका है कि वो ये काम करती है।
0: बिल्कुल, और हिंसा से उन्हें दूर रखती है।
1: तो वो संस्कृति जो है वो तुरंत में कुछ उसका रूप नहीं दिखाई पड़ता, पर वो हमारी चेतना में आती
0: बिल्कुल,
1: है
0: और गहरा असर
1: पड़ता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो एक वातावरण हम आकाशवाणी केंद्र से पूरे शहर में देते थे, उसका चुकना अभी खलता है। मतलब ये होना चाहिए कि अभी भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये एक चीज थी जो नहीं होती थी।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है शिवराज सर, ये तो श्रोता हमारी बातें तो सुन लेते हैं अपने रेडियो के माध्यम से, लेकिन ये श्रोताओं से भी रूबरू होने का और आमने सामने बातें करने का, मिलने का एक अच्छा मौका होता होगा।
1: अच्छा मौका था बहुत। और हमें याद है कि मतलब उसकी वजह से हम लोगों की भी शहर में एक प्रतिष्ठा रहती थी, लोगों को लगता था भाई
0: आकाशवाणी
1: आमंत्रित करेंगे सुनने का मौका।
0: मुझे लगता है कलाकार के लिए बहुत गौरव की बात होती होगी कि आकाशवाणी के किसी संस्था ने उसे आमंत्रित किया है, आकाशवाणी जैसे संस्था ने, ये बहुत बड़ी बात होगी।
1: और कभी कभी हम लोग इसमें क्या करते थे कि चारों केंद्रों को मिलाकर भी बुकिंग होती थी, उसको चेन बुकिंग कहते थे। माने वही कलाकार हैं,
0: हाँ,
1: वो पटना में आए, फिर 2 दिन के बाद भागलपुर आए, फिर 2 दिन के बाद रांची आए। तो ये होता था। तो ये एक बड़ी अच्छी परंपरा थी, क्योंकि मैं इसे बहुत मिस भी करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी चर्चा हम लोग करें।
0: नहीं, और एक अच्छी बात आपने कही कि संस्कृति हमारी चेतना में प्रवेश करती है, संस्कृति हमें जड़ों से जोड़ने का काम करती है। तो जब तक हम संस्कृति से जुड़े रहेंगे, हमारा जो मानवीय स्वरूप है वो मुझे लगता है और प्रगाढ़ होता रहेगा और सशक्त होता रहेगा।
1: देखिए, हमारे एक मित्र हैं, साहित्यकार मित्र, वो ये कहते हैं कि आप साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपको वर्तमान सामाजिक परिवेश में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। लेकिन 20 वर्ष के बाद जो पीढ़ी आएगी वो संवेदनाहीन और हिंसक पीढ़ी होगी।
0: बिल्कुल, उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन नजर आएगा।
1: इतनी बड़ी भूमिका इसकी है
0: जी। तो श्री प्रकाश सर, कई सुनहले दौर होते हैं हर संस्था के। जब आपने यहाँ पर काम किया, आपने बताया कि जो इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे, लोगों को जोड़ते थे, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के उद्घोषकों को, सबको जोड़

0: के रखने का काम करते थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ तो चुनौती आप लगी होगी उस समय कि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं आकाशवाणी के संस्था के साथ जुड़ी जिन्हें दूर कर दिया जाए तो आकाशवाणी की पहुंच और इसका जो प्रसारण और बहुत विस्तृत हो जाएगा।
1: देखिए, आकाशवाणी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो पहली थी जिस पर हम लोगों ने चर्चा की कि सांस्कृतिक परिवेश को बचाना। दूसरी चुनौती थी वो तबका जिसके पास की सुविधाएं नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान की बातें जिस तक नहीं पहुंच रही हैं, उन्हें हम कैसे जागरूक करें। तो आपको अभी भी वो कार्यक्रम होते हैं, माने ग्रामीण कार्यक्रम हो रहे हैं और ये कार्यक्रम, और शायद आप लोग जानते ही होंगे कि आकाशवाणी का जो रीच है मेरे ख्याल से 95% या 96% रीच हो चुका है आकाशवाणी का। तो पूरा जो ग्रामीण परिवेश है, मुझे याद है कि हम लोग कई बार जो ट्रेनिंग में जाते थे और वहाँ पूरे देश के कार्यक्रम अधिशासी और अन्य अधिकारी जमा होते थे तो वे बताते थे कि आकाशवाणी के द्वारा दी गई सूचनाओं से कई किसानों ने अपने खेती में परिवर्तन और उन्नति लाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये असर तो दिखता है हमें अभी भी ग्रामीण इलाकों में, तो ये पूरा का पूरा असर दिखता है क्योंकि जो भी हमारे विशेषज्ञ आते हैं चाहे वो कृषि के क्षेत्र के हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों, उनकी बातों का सीधा असर हमारे ग्रामीण परिवेश में तो पड़ता है। श्री प्रकाश सर, एक और बात है, हम निष्पक्षता की बात करते हैं, विश्वसनीयता की बात करते हैं, और मुझे लगता है, मैं अभी कई वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम उस संस्थान से जुड़ने का हमें मौका मिला है जो बहुत ही विश्वसनीय है। कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसी बड़ी खबरें इधर उधर से आ जाती थी लेकिन लोग जल्दी से अपना रेडियो ऑन करते थे कि नहीं, ये खबर जब तक आकाशवाणी से नहीं आएगी तब तक हम इसे पुष्ट खबर नहीं मानेंगे। तो वो विश्वसनीयता और वो निष्पक्षता, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए।
1: देखिए, इसमें तो सबसे जो बड़ी रेखांकित करने वाली बात है कि अभी हम एक मीडिया विस्फोट के जमाने में पहुंच गए हैं। ढेरों विजुअल चैनल्स हैं, ढेरों ऑडियो चैनल्स हैं, लेकिन जो आपने कहा कि लोगों को एक सुकून मिलता था और पूरा भरोसा होता था जब वो आकाशवाणी से सुनते थे, मैं अभी भी कहता हूँ, अभी भी हालांकि लोगों को सुनने में वो कमी हो गई है आकाशवाणी के समाचारों को सुनने की, लेकिन अभी भी जब आप एक बार 10 मिनट का न्यूज बुलेटिन सुनेंगे
0: तो सारी चीजें आपके सामने
1: आएंगे और आपको लगेगा कि समाचार मैं सुन रहा हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैं कोई झगड़ा और बहस नहीं सुन रहा हूँ, मैं किसी के द्वारा बनाए गए प्रेजुडिस ओपिनियन को नहीं सुन रहा हूँ, मैं समाचार सुन रहा हूँ। इस गरिमा को आकाशवाणी ने अभी तक बचा कर रखा है।
0: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी समाज के प्रति बहुत बड़ी जवाबदेही है जो आकाशवाणी बड़ी शिद्दत के साथ निभा रहा है।
1: देखिए, मैं इसमें जोड़ूं, जब आप समाचार कह रहे हैं तो वो एक सूचना है, उसमें एक सूचना की शालीनता होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: उसमें वो उन्माद और अतिरेक नहीं होना चाहिए,
0: हर चीज ब्रेकिंग न्यूज के रूप में
1: नहीं आनी चाहिए कि वो आदमी जो है उसको समाचार ना लेके या तो कुछ घबराहट की बात सुन रहा है या वो कुछ क्रोध की बात सुन रहा है या यदि आनंद की बात भी सुन रहा है तो उसमें इतना अतिरेक है कि वो भी कोई रचनात्मक कुछ क्रिएट नहीं कर पाता है।
0: और कई बार ऐसा होता है जो उस पैनल डिस्कशन में लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बहुत गंभीरता से अपनी बातों को करना चाहते हैं, बस वो जो, लेकिन जो हल्ला बोल होता है उसमें वो गंभीर बातें भी कहीं ना कहीं दब जाती हैं, हम तक नहीं आ पाते।
1: उस बीच अभी भी आप आकाशवाणी का जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक वगैरह होता है या कोई एक, अभी पता नहीं वो परंपरा है कि नहीं, पहले एक घंटे का वार्ताओं का एक विशेष कार्यक्रम होता था,
0: भारतीय कार्यक्रम,
1: जिसमें एक वार्ताकार एक घंटा बोलते थे। वो अभी नहीं हो रहा है शायद, लेकिन तब होता था। मुझे याद है कि वो केदारनाथ सिंह जो पोएट है, वो सोना चक्रवर्ती जो स्पीकर थे, वो उन लोगों का कार्यक्रम उन लोगों का हुआ था। तो उसको सुने, उसको सुनते हुए या आपको समझ में आएगा कि वास्तव में मीडिया से चीजें कैसे प्रसारित की जाती हैं और कैसे वो रिसीव होती
0: हैं के साथ और कितनी गरिमा के साथ।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
0: श्री प्रकाश सर, इसी कड़ी में मुझे एक और सवाल आता है कि कई बार, जैसे अभी हमने कोविड को झेला कुछ वर्षों पहले, 2-3 वर्षों पहले, तो कई बार जब ये प्राकृतिक आपदा की बात आती है उस समय मुझे लगता है कि आकाशवाणी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये इस स्थिति में, ऐसे समय में आप आकाशवाणी को किस रूप में देखते हैं और इसकी भूमिका को किस रूप में?
1: देखिए, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति आती है तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है सही सूचना।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मुझे याद है कि पटना में एक बार बाढ़ आया था, ये शायद 1970 के आसपास की बात, जबकि आकाशवाणी का स्टूडियो डूब गया था, आप लोगों को नहीं पता होगा
0: जी।
1: और

0: जी ने फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी रचनाओं में उसकी चर्चा की है, तो उस समय सारा मतलब शहर पैनिक में था और अफवाहें उड़ने लगती हैं ऐसे समय में। तो उस समय आकाशवाणी नियमित जो बुलेटिन होते हैं उनके अतिरिक्त अलग से 15-15 मिनट पर, और कई बार ऐसा मौका आया है कि 24 घंटे हम लोगों ने वो काम किया है, रात रात भर ड्यूटी,
1: ताकि लोगों में जो अफवाहें हैं वो लोगों
0: सही सूचना मिले। मैं जब आकाशवाणी कोलकाता में था तो उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, आकाशवाणी कोलकाता से अधिकारी लोग गए थे पूरा वहाँ स्टूडियो को मैनेज कर लेने के लिए, कैसे सूचनाओं को रखा जाए,
1: मतलब वो प्रसारण कहीं बाधित
0: ना हो
1: और लोगों तक सूचनाएं सटीक सूचनाएं पहुंचे और समय पर पहुंचे। ये बहुत बड़ी जवाबदेही निभा रहा आकाशवाणी। श्री प्रकाश सर, एक और बात है, कई बार जब आप किसी संस्थान में, जैसा आपने बताया आप 30-32 वर्षों तक रहे हैं, बहुत ऐसे अविस्मरणीय से पल हो जाते हैं जो गाहे बगाहे हमें याद आ जाते हैं कि अरे वो घटना हुई थी, हमारे कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में ये बातें बैठ जाती हैं। कुछ ऐसा किस्सा बताइए हमारे श्रोताओं को जो आपको आज भी बहुत आनंद देता है या आप याद करते हैं तो अपने आप में मुस्कुरा लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे मुख्य बात तो ये है कि मैं चूंकि सब दिन साहित्य या नाटक रूपक जैसे कार्यक्रमों से जुड़ा रहा, जिसका स्वभाव थोड़ा गंभीर है
1: जी।
0: तो जो भी बातें जीवन में आई वो गंभीर
1: और
0: गंभीरता लिए हुए, संवेदना लिए हुए। अब जैसे आपने कहा कि कुछ याद याद, मुझे ये है कि जब मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में पहली बार रांची में ही ज्वाइन किया था, उसके पहले मैं ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव था और भागलपुर से मैं ट्रांसफर पर यहाँ आया था। तो कार्यक्रम की पूरी जिम्मेवारी जब मिली तो सबसे पहले ये मन में रहता था कि अधिकतम लोगों को मैं इस कार्यक्रम में शामिल कर सकूं। नए लोग आते थे, कच्ची स्क्रिप्ट लेके आते थे, तो मुझे मैं उसे एक मतलब कर्तव्य की तरह और जो धर्म शब्द का जो सही अर्थ है समझ लीजिए उसकी तरह कि एक कार्यक्रम अधिशासी का क्या धर्म है, ये नहीं कि आलेख नहीं आपका नहीं प्रसारित हो सकेगा,
1: ऐसा सुधारने का काम
0: मैं सुधारता था। मुझे याद है कई बार दो दो तीन तीन बार लोग स्क्रिप्ट सुधार कर
1: लेते, प्रसारण के योग्य नहीं रहती होगी स्क्रिप्ट,
0: तो वो है, लेकिन मैंने उन्हें मौका दिया है। मुझे ये भी याद है, अभी देखिए हजारीबाग के एक बड़े कथाकार हैं, मुझे याद है जब मेरी मैंने उन्हें बुलाया था और उनकी एक कहानी पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो हमने उनको एक कहानी में कुछ सजेस्ट किया
1: जी।
0: उसमें वो एक महिला धाविका की कहानी थी, तो उसमें हमने कुछ सजेस्ट किया कि ये स्वाभाविकता की इसमें कमी लग रही, वो उनको इतना अपील किया कि मतलब हम लोग की वो बातचीत जीवन भर की मित्रता में बदल गई।
1: हाँ, ये बदलाव आ गया।
0: ये तो मेरा इस तरह का,
1: अगर लोग इसे सकारात्मक तरीके से ले तो एक अच्छा बदलाव आ सकता है। और एक और बात मुझे याद आती है शिवका सर, कि जब हम लोग यहाँ से कार्यक्रम देके स्टूडियो से बाहर निकलते थे तो ड्यूटी रूम में हम इंतजार रहता था कि आज हमारी आखिरी ड्यूटी है तो चेक मिलेगा। ये बात आप बताइए हमारे श्रोताओं।
0: मैं वही कहने जा रहा था कि एक और जो वो सब बातें तो हम लोगों ने कर ली कार्यक्रम की, जो प्रशासकीय जो एक बड़ी बात थी कि थोड़ा सा मैं उसमें 2-3 मिनट समय लेके बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये थी कि कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होने, जैसे मान लीजिए 20 तारीख को रिकॉर्डिंग है, तो 19 की शाम में उस कार्यक्रम का चेक बनकर ड्यूटी रूम में पहुंच जाता था प्रीवियस इवनिंग। और हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किए, उसका वार्ताकार को या कलाकार को लेके ड्यूटी रूम गए, वहां पर हमने एक ब्रॉडकास्ट रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट दिया और उनके हाथ में चेक दे दिया। मैंने ये एक ऐसी परंपरा थी, और उसको लेके मैं ये भी बता दूं कि चेक कैसे बनता है। चेक इसलिए बन पाता था कि आपके पास पूरी एडवांस प्लानिंग है, आपने सफिशियंट पहले कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, शीट आपके हाथ में मिल चुका है और वो कार्य एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ने चेक बनने जा
1: रहा है,
0: यानी इतना एडवांस आपको रहना पड़ता था। और यदि आपका चेक नहीं पेमेंट हुआ या यदि मान लीजिए आप किसी कलाकार को चेक नहीं दे पाए, या आपका चेक बना हुआ रहा और कलाकार रिकॉर्डिंग में नहीं आया और वो चेक कैंसिल हुआ, तो उसकी दूसरे दिन प्रोग्राम बैठक में बहस होती थी और कार्यक्रम अधिशासी को जवाब देना पड़ता था। मतलब इतनी चीजें मैनेज्ड थी, ये था, ये एक बड़ी चीज है।
1: ये तो चेक की बात हो गई। और
0: मैं इसमें एक और बड़ी एक मजेदार बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय इस तरह से तुरंत चेक मिलता था, कभी कभी ऐसा मौका होता था कि जैसे एकदम आकस्मिक रूप से कोई रिकॉर्डिंग तैयारी नहीं उसके लिए रिकॉर्डिंग आवश्यक है, तो वो चेक बाद में देना रहता था। तो हम लोग जब भी हम लोग मिलते थे किसी भी कार्यक्रमों में,

0: अपने आदिवासी लोग सारे, तो वो उसमें ये एक चर्चा जरूर होती थी कि हम लोगों को कभी भी किसी आयोजन में मिल रहे हैं तो लोग ये टोकने वाले मिल जाते थे, देखिए ना मेरा चेक नहीं मिला है। ये हम लोग चाहे वो हम लोग किसी सहभोज में गए हो, चाहे किसी कार्यक्रम में रहे हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव को ये खतरा रहता था।
1: मुझे लगता है श्री प्रकाश सर उस चेक की राशि का बहुत महत्व नहीं था, लेकिन वो चेक की अपनी अहमियत होती थी और वो जो खुशी मिलती थी उस चेक को पाने से, और इस खुशी को मैंने भी कई बार महसूस किया है। और किसी वजह से जैसे आपने बताया जब अंतिम जिस दिन आखिरी ड्यूटी रहती थी महीने की चेक नहीं मिलता तो थोड़ी सी निराशा तो जरूर होती थी।
0: मतलब ऐसा था ना जैसे कि 6 दिन की ड्यूटी या 5 दिन की ड्यूटी थी तो 4 दिन 5 दिन हर दिन कंसर्न प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट दे देता था और जस्ट लास्ट बट वन डे में वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में चेक बनने चला था। तो असल बात यह है कि हम उस परंपरा को इसलिए भी याद करते हैं कि वो सिर्फ एक घटना नहीं है, उसके पीछे जो एक सिलसिला है, जो ढंग से काम करने का जो स्वरूप था, ऐसे नहीं चेक बनी, हाँ एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को कायम रखना बड़ा आवश्यक है। अब तो शायद मुझे लगता है कि पेक्स भी नहीं जान पाते हैं कि चेक गया कि नहीं गया, क्योंकि उनके पास चेक जाने के बाद तो इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है,
1: क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, डिजिटली हो गई है।
0: ये है, ये बातें हैं,
1: बिल्कुल
0: कुछ बातें मुझे लगता है कि मैं जो कुछ और कार्यक्रम जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था जिस समय हो तो मैं उसके बारे में बता दूं कि जैसे सबसे तो पहली बात यह कि जब मैं रांची में आया तो यहाँ के जितने प्रतिष्ठित प्रोफेसर साहित्यकार कवि सबको मैंने बड़ी ही प्रतिष्ठा के साथ आमंत्रित किया। पुराने कुछ नाम हैं जैसे डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर नागेश्वर लाल, भारत यायावर बोकारो से आते थे जिन्होंने फणीश्वरार्थ रेणु पर विशेष कार्यक्रम किया, आपको हजारीबाग से आते थे रतन वर्मा कथाकार, धनबाद से अनवर शमीम आते थे। तो मैंने कोशिश की कि सारे लोगों को लाएं और मैं ये भी करता था कि खोजता था कि कहाँ कहाँ वार्ताकार। मुझे याद है कि उस समय हंस पत्रिका में पत्रिका के अंत में जितने भी शामिल होते थे कथाकार या कवि उनका पता लिखा होता था। तो शंभू बादल बड़े वरिष्ठ कवि हैं, पता नहीं यहाँ इधर रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, लेकिन वो ये पहले हमारे समय में उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी, वो हजारीबाग में रहते थे। मुझे याद है कि हंस से मैंने पता खोज कर तब फिर उनको उनसे मैंने पत्राचार किया और उन्हें यहाँ इस तरह से बुलाया, इस तरह से धनबाद के लोगों को बुलाया। तो ये मैंने किया था,
1: मतलब कोशिश रहती थी आपकी कि अच्छे लोग आए इस संस्था से जुड़े और अपनी चीजों को लोगों तक श्रोताओं तक पहुंचाने का काम करें।
0: और एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, एक कार्यक्रम था जो मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया था, केंद्रीय निदेशक महोदय से डिस्कस किया, उन्होंने अप्रूव किया, एक संभावना कार्यक्रम करके मैंने अलग से जोड़ा था। इसमें क्या था, युवावाणी में तो सिर्फ युवा आ गए,
1: बिल्कुल,
0: और जो सामान्य काव्य गंगा और कहानी का कार्यक्रम उसमें वरिष्ठ साहित्यकार आ रहे हैं, तो जो बीच के किशोर वय के लोग जो अच्छा लिख रहे हैं उनके लिए मैंने एक संभावना दिया। अभी कई बड़े कहानीकार जो हैं वो लोग उस समय संभावना में, आपको पता शायद मालूम हो, नीला प्रसाद बड़ी अच्छी कथाकार है, मेहरुन्निसा अब्दाली बड़ी अच्छी कथाकार हैं, कलावंती जी बड़ी अच्छी पोएट हैं, इन लोगों को मैंने संभावना में बुलाया था और उनको क्या करता था कि 10 मिनट का उनका प्रोग्राम 9 से 10 मिनट में खत्म करके और आखिरी 4-5 मिनट में किसी एक समीक्षा को साथ में बिठाता था, वो उस पर एक टिप्पणी देते थे, तो एक कंपोजिट प्रोग्राम बनता था। तो इस तरह की कुछ चीजें थी।
1: बिल्कुल श्री प्रकाश सर, बहुत शानदार से प्रयास रहे हैं, बड़ी अच्छी कोशिश आपकी रही है और आपकी बातचीत भी बहुत अच्छी रही है। तो चलते चलते चूंकि अब आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, अपनी दूसरी पारी में आप कवि की भूमिका में, अभी आपकी किताब में देख रही थी असंभव के विरुद्ध, और इसके बाद आप एक मासिक पत्रिका के संयुक्त संपादक है, एक अलग सी भूमिका है जहां बहुत व्यस्तता है, बावजूद इसके आकाशवाणी आपको कहां तक खींचता है, आकाशवाणी का एक अंग होने का और इसकी व्यवस्था का एक अंग होने का जो सुकून है, जो सुख है, वो आप कैसे महसूस करते हैं?
0: देखिए
1: कितने गहरे है ये सुकून।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं एक, जैसा आपने कहा कि मैं कवि भी हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ, तो कविताओं में के अंतिम पृष्ठ पर परिचय रहता है कवि का, तो उसमें जो मेरा पहला परिचय रहता है वो यही है कि प्रसार भारती से सेवानिवृत्त अधिकारी और अब स्वतंत्र लेखक, यानी ये एक ऐसी संस्था है जिसके नाम से आपको गरिमा मिलती है,
1: बिल्कुल,
0: समाज में
1: सम्मान मिलता है,
0: शहर में सड़क पर, माने कई बार तो ऐसी है, उतना समय हम लोगों के पास नहीं है कि सड़क पर की कोई ऐसी घटना हुई है जब उसको मालूम हुआ कि अरे ये आकाशवाणी का अधिकारी है, तो उसका बिल्कुल रिएक्शन ही बदल गया,
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो इसलिए ऐसी संस्था से जुड़ के तो गौरव महसूस होता। आज तक हम लोग कहीं जाते हैं, किसी डॉक्टर से मिलना है, किसी और लोगों से मिलना है, एक लाइन यदि आकाशवाणी वाला जोड़ देते हैं तो उसके चेहरे पर एक अलग परिवर्तन आ जाता है। तो ये है एक चर्चा में थोड़ी सी, एक कार्यक्रम छूट गया है, नाटक रूपक भी मैं देखता था, तो नाटक में भी मुझे याद है कि इस शहर के, चूंकि कुछ कलाकारों को मैं इस बहाने याद कर सकता हूँ, जैसे चंद्रमोहन खन्ना थे,
1: बिल्कुल,
0: अशोक पागल थे, ये सब बड़े नाटक के कलाकार, और इनको मैंने अपने नाटकों में, इनकी भूमिका मैंने करवाई है, और उन्हें जो भी मेरे अंदर जो सलाहियत थी वो मैंने इन्हें समझाया। अभी जो उद्घोषक हैं दिनेश, वो भी हमारे नाटक में रहे हैं। मुझे याद है एक, चूँकि खास नाटक है, एक डॉक्टर श्याम सुंदर घोष प्रोफेसर थे, उनकी एक पुस्तक थी नाटक की, काल पुरुष की योजना, पूरे लंबे मतलब 2.5-3 घंटे का, उनकी बड़ी इच्छा थी कि इसका प्रसारण हो। उस नाटक को मैंने संशोधित करके 28-29 मिनट के रेडियो नाटक में बदला और बनवास का सच करके उस नाटक को मैंने प्रसारित किया। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि राम के वनवास को लेकर जो जो बातें हम जानते हैं उसको उन्होंने एक अलग ढंग से, निरूपित किया
1: जी,
0: था
1: जी।
0: तो ये था, तो ये नाटक रूपक भी जो रहा वो भी मेरे लिए बड़ा ही विशेष संभाग रहा, और उसको भी मैंने बड़े ढंग से निभाया, और कलाकारों का बड़ा ही मुझे उसमें भी उनकी प्रतिक्रिया और उनका सम्मान हमको मिलता रहा।
1: बिल्कुल श्री प्रकाश सर, आपसे बातें करके मुझे लग रहा है कि अपने काम में अगर ईमानदारी हो, अपने काम से प्यार हो, तो चाहे हम सेवानिवृत्त हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन वो जो अपने काम का स्नेह है, काम के प्रति प्यार है, वो लगातार बना रहेगा। और मुझे अच्छा लग रहा है, सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि इतने समय से आप जुड़े रहे आकाशवाणी से, लेकिन आकाशवाणी के प्रति आपका प्यार, आपका लगाव इसी तरह बरकरार है। तो हमारी कोशिश है, हमारी ये कामना है, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि आप यूं ही हमसे जुड़े रहिए, आकाशवाणी से जुड़े रहिए, और आपकी जो कार्य का आपका जो तरीका है उससे हमें बहुत कुछ सिखाते रहिए, और आप स्वस्थ रहें, बहुत प्रसन्न रहें, और बहुत अपने क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ें, ऐसी अनंत अशेष शुभकामनाएं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंत में मैं आपके प्रति, इस आकाशवाणी परिवार के प्रति इस बात के लिए सहृदयता से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे विशेष कार्यक्रम के लिए आपने मुझे प्रतिभागी बनाया और मुझे भी अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रांची के पूर्व प्रसारण कर्मी और वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश देवकुलिस से सोनाक्षी शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके सबसे पसंदीदा शो आपकी पसंद में। मैं हूं आपकी दोस्त आभा। तो हो जाइए तैयार अपने पसंद के गाने को सुनने के लिए। तो चलिए सबसे पहली फरमाइश के साथ शुरू करते हैं फिल्म दो दिलों की दास्तान से। अनजान का लिखा ये गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं डेहरी ऑन सोन से किरण सिंह, संजय सिंह और अविनाश सिंह।

अगला गाना है फिल्म महाराज से मोनाली ठाकुर के स्वर में, बोल है कौसर मुनीर का, संगीत सुहेल सेन का, और सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बड़ा बॉम्बे सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेन। गांधी चौक रूपर पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक और मीका वीरक।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.

0: govin पर लॉगिन करें।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

हमारी अगली श्रोता है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, और ये सभी लिखते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज में आपकी पसंद का कोई सा भी सुपर हिट गीत सुनवा दीजिए। तो चलिए इन लोगों को सुनवाते हैं फिल्म खानदान का ये सुपर हिट सॉन्ग लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लयालपुरी की रचना है, संगीत खयाम का।

0: नमस्कार बहनों, आपकी सखी निधि स्वागत करती है आप सबका कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज मेरे साथ हैं सुभाषिनी। कहो सुभाषिनी, कैसी हो?
1: बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और बहनों को मेरा भी नमस्कार। और निधि, आशा करती हूँ हमारी बहनें भी कुशल मंगल होंगी। अभी तो बच्चों की छुट्टियां हैं, इस वजह से बहनों की व्यस्तता तो बढ़ ही गई होगी। बच्चों को अलग अलग क्लासेस में ले जाना, साथ ही छुट्टियां हैं तो उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखना, क्यों?
0: हाँ, बिल्कुल सही बात कही तुमने सुभाषिनी। बच्चे ज्यादातर चीजों के लिए माँ पर ही तो निर्भर करते हैं, है ना? इसलिए हमारी जो बहनें हैं वो काफी व्यस्त तो हो ही गई होंगी और उन्हें वक्त निकालना ही पड़ता है। खासकर अभी छुट्टियां हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि भाई हम तो हमेशा पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अभी हमें चाहिए सिर्फ मनोरंजन। तो अभी जो हमारी बहनें हैं वो बच्चों के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए खास करके उन्हें वक्त निकालना पड़ता है और इस बात का ख्याल माँ को ही रखना पड़ता है। तो बहनों, हम अपना काम कर सकें, स्वस्थ रह सकें और

0: अलग अलग जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उनमें बच्चों को हम हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सके, उसके लिए हमें भी तो स्वस्थ रहना है।
1: बिल्कुल, है ना? बहुत ही सही कहा तुमने। और जब स्वस्थता की बात आती है ना, कि अगर खास करके माओं की बात आती है, तो आहार जो होता है ना, वो सबसे पहले आहार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और हमें ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए।
0: हाँ, तो आज हम बातें करेंगे कि आहार जो है हमारा, यूं तो हम सभी पोषक तत्व उसमें लेते हैं और काफी लोग सावधान भी रहते हैं इस मामले में, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आहार में जो फाइबर होता है, जिसे हम रेशा बोलते हैं या आमतौर पर रफेज बोलते हैं, तो ये एक आवश्यक पोषक तत्व है जो भोजन में होना ही चाहिए और सही मात्रा में होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात कि ये जो पाचन क्रिया है हमारी, डाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसे बिल्कुल दुरुस्त करता है और साथ ही ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। इसका कारण ये है कि ये मोटापे पे बिल्कुल नियंत्रण लगाता है। तो आहार में रेशेदार चीजें जो हैं, यानी फाइबर, उनका होना बहुत जरूरी
1: हो जाता है। तो आहार में फाइबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है बहनों, क्योंकि ये पचता नहीं है बल्कि हमारी आंतों की सफाई करता है। फाइबर युक्त भोजन से लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहता है और इससे हम बार बार खाने से बच सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर हम हमें भूख लगती है ना, तो हम बार बार खाते हैं और हमारा इससे क्या होता है ना कि वजन भी नियंत्रित रहता है।
0: हाँ, तो बहनों को और अच्छे तरीके से बता दें कि आखिर फाइबर है क्या। ये आमतौर पर तो हम जानते ही हैं, इस शब्द से हम अवगत हैं, लेकिन जो पौधों से हमें जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो भी पौधों से आते हैं, तो उसमें एक ऐसे रेशेदार पदार्थ होते हैं जो खुद नहीं पचते, मतलब उनका पाचन नहीं होता है, लेकिन वो दूसरी चीजें जो हम खा रहे हैं उनको पचाने में मदद करते हैं और वे शरीर में अवशोषित भी नहीं होते, यानी वो एब्जॉर्ब भी नहीं होते, तो वो जिस तरीके से है उसी तरीके से शरीर के भीतर जाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन दूसरी चीजों को पचाने में वे मदद करते हैं। तो इस कारण से फाइबर जो है, इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है हमारे भोजन में।
1: बिल्कुल।
0: और ये हमारी आंतों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसके लिए, तो उनके स्वास्थ्य का भी ये ख्याल रखता है, तो इसे हमें अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए।
1: और फाइबर युक्त भोजन करने से हम ब्लड शुगर को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और फाइबर एलडीएल यानी कि जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होते हैं उन्हें भी कम करता है। ये हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
0: हाँ, क्योंकि देखो डायबिटीज जो है वो बहुत ही आम बीमारी है आजकल। ब्लड शुगर से न जाने कितने ही लोग पीड़ित हैं, तो ब्लड शुगर के जो मरीज हैं, यूं तो सभी को फाइबर लेना चाहिए भोजन में, लेकिन जो शुगर के मरीज हैं, जो मधुमेह के मरीज हैं, उनको खास इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके भोजन में रफेज फाइबर यानी रेशेदार जो चीजें हैं वो जरूर रहें।
1: बिल्कुल। तो बहनों, अब ये जानते हैं कि फाइबर युक्त भोजन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन चीजों से क्या खाएं हम जिनमें कि फाइबर होता है।
0: बिल्कुल, इनके नाम तो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है साबुत अनाज, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, दलिया और जौ, ये सभी फाइबर से भरपूर होते हैं। और फल और सब्जियों की हम बात करें तो बहुत सारे फल हैं, जैसे सेब, नाशपाती और गाजर है, ब्रोकोली, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है, तो इन्हें हमें अपने आहार में रोज शामिल करना ही चाहिए।
1: और राजमा हो गया,
0: दालें जो हैं जिनमें बहुत सारी चीजें हैं,
1: चना, मूंग, बादाम हो गए, अलसी, ये सभी फाइबर युक्त भोजन है बहनों, इन्हें अपने आहार में अवश्य शामिल करें।
0: हाँ बिल्कुल। और ये इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब आप फल खा रहे हैं तो फल ही खाएं, ज्यादातर लोग उसका जूस पीने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत आसान लगता है, या बच्चों को भी ये पसंद है, तो बच्चों को भी हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पूरा ही फल खाएं, क्योंकि जब हम जूस पीते हैं तो उसका जो रेशा होता है फाइबर, वो निकल जाता है, तो वो हमारे शरीर के लिए, हम ये सोचते हैं कि ये तो भाई बेकार की चीजें हैं और इन्हें हटा देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेशा बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, पाचन तंत्र के लिए, और पाचन तंत्र से ही हमारा जो सारा शरीर है ना, वो प्रभावित होता है ना। तो ये हमारे जो

0: जनरल हेल्थ जो बोलते हैं, जो आमतौर पे जो स्वास्थ्य है उसका अच्छी तरह से ये ख्याल रख सकता है। तो आहार में इसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अब हमें ध्यान है सुभाषिनी,
1: हाँ
0: हमने
1: बिल्कुल,
0: याद है
1: हाँ
0: ना बच्चों की मनोरंजन की बातें हम कर रहे थे
1: हाँ
0: शुरुआत में, तो
1: बिल्कुल,
0: अब हम जो माँ है
1: उनके मनोरंजन की
0: हाँ,
1: भी
0: और जो
1: बातें
0: हमारी
1: होनी
0: बहनें
1: चाहिए।
0: हैं उनके मनोरंजन के लिए हम ये गाना लाए हैं उनके लिए, चलिए
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और बहनों, इसी के साथ ही हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। और निधि, आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बहनों हम इस भेंट वार्ता के साथ, और आज का विषय है घर बैठे रोजगार के तरीके। भेंट वार्ताकार हैं राखी माहेश्वरी, जो कि एक समाज सेविका हैं, और इनसे बातें कर रही हैं सुभाषिनी। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
4: किसी भी समाज की तरक्की तब होती है जब समाज के लोग आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होते हैं। अक्सर कई प्रतिभावान व्यक्ति घर की जिम्मेदारियां, कुछ मजबूरियां, इस तरह के कारणों से, और बहुत सारे छात्र अपनी पढ़ाई की वजह से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में घर बैठे रोजगार उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यह साधन आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी देता है जो चार दीवारी के पीछे हैं। तो कैसे घर बैठे रोजगार हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं घर बैठे रोजगार के, इन्हीं तमाम बातों के विषय में आज हम बातें करेंगे। हमारे साथ हैं राखी माहेश्वरी, जो एक समाज सेविका हैं। आइए उनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। नमस्कार।
5: नमस्कार सभी को।
4: जी राखी जी, हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि घर बैठे रोजगार के तरीके जो हैं आज के समय में, आज के दौर में इतने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, आखिर ऐसा इसमें क्या है?
5: हाँ देखिए, जब कोविड था तो उस समय लोगों ने समझा कि काम के लिए ऑफिस जाना जरूरी नहीं है, घर बैठे रोजगार से समय बचता है, ट्रैवल का खर्चा नहीं होता है, और महिलाएं, स्टूडेंट्स, रिटायर्ड लोग सब अपनी सुविधा से काम कर सकते हैं, और इंटरनेट और स्मार्टफोन ने इसे और भी ज़रूरी बना दिया है, मतलब सबके लिए कहीं तो दरवाजे खोल दिए हैं। तो घर बैठे रोजगार इसीलिए आजकल सबको समझ में आ गया है कि ये जरूरी है, या कह सकते हैं इसका महत्व बहुत है। महंगाई का दौर है तो अतिरिक्त कमाई भी इससे हो जाती है। महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं तो घरेलू महिलाएं जो होती हैं वो घर बैठे काम संभालती हैं, कमा पा रही हैं। स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा भी खुद ही उठा रहे हैं, और इंटरनेट गांव गांव तक पहुंच गया है तो काम बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं वो बाहर, मतलब विदेशी कंपनियों के लिए भी काम कर रहे हैं। और डिग्री से ज्यादा अब आपके हुनर को, स्किल को समझा जा रहा है, उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि समय की बचत हो जाती है, रोज आने जाने का जो किराया है वो बचता है, समय बचता है, लोग अपनी समय मर्जी से समय पर काम कर सकते हैं और परिवार को भी संभालते हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए तो ये बहुत अच्छा कमाई का जरिया है। तो इस तरह से आज के दौर में अगर देखें तो घर बैठे रोजगार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
4: जी बहुत बढ़िया राखी जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर बैठे रोजगार क्या सिर्फ ऑनलाइन ही के माध्यम से ही हम कर सकते हैं, या घर बैठे रोजगार के तरीके और भी हैं, इसके बारे में जरा हमें बताएं।
5: नहीं नहीं, घर बैठे रोजगार के लिए सिर्फ ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है, ऑफलाइन माध्यमों से भी घर पर रहकर बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है। जैसे कि पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसमें आप मोमबत्ती, अगरबत्ती, राखी, मसाले हो गए, स्टेशनरी की पैकिंग करना, ये सब काम किया जा सकता है। घरेलू उद्योग में घर पर साबुन, मोमबत्ती या लिफाफे बनाकर उसको लोकल मार्केट में बेचना, ये कर सकते हैं। फिर हैंडीक्राफ्ट आर्ट हो गया, जिसमें कि टेलरिंग, बुनाई, कपड़ों कपड़े सिलकर, कढ़ाई कर कर, या फिर जो बुटीक का काम भी होता है ना, वो भी घर बैठे ही आप कर सकते हैं। गिफ्ट और डेकोरेशन का हो गया, जिसमें आप शादी के कार्ड बनाना, त्योहारों के लिए दिए गए जो गिफ्ट होते हैं उस तरह का आइटम बनाना, पैकिंग करना। फूड और कैटरिंग का जो बिजनेस है, उसको भी आप खोल सकते हैं कि घर बैठे काम कर सकते हैं, उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि टिफिन सर्विस हो गया, ऑफिस जाने वालों या छात्रों के लिए घर का बना खाना सप्लाई करना, अचार पापड़ जो बनाते हैं, होममेड अचार पापड़ या मसाले तैयार कर जो लोकल मार्केट या इसमें बेचते हैं। होम बेकरी हो गया, जिसमें जन्मदिन और त्योहारों के लिए घर पर केक और पेस्ट्री बनाकर

0: ऑर्डर लिया जा सकता है
1: जी।
0: होम ट्यूशन भी देते हैं, होम ट्यूशन भी चलता है और अपने घर के आसपास के बच्चों को जो पढ़ाते हैं। इसी तरह से डे केयर हो गया, जिसमें कि कामकाजी माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को दिन भर छोड़ के जाते हैं डे केयर में, वहाँ उनके बच्चों की देखभाल की जाती है। ब्यूटी पार्लर, ये भी तो अच्छा काम है, घर के कमरे में छोटा सा पार्लर से आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह के काम होते हैं जो कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन काम को ही आप घर बैठे कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से काम हैं जो ऑफलाइन भी होते हैं, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के काम हम घर बैठे कर सकते हैं और वो उसे कमाई का जरिया बना सकते हैं।
1: जी, यानी कि जो घर बैठे रोजगार के तरीके हैं वो ऑनलाइन भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ऑफलाइन भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत तरह के रोज़गार के तरीके हैं जैसा कि आपने बताया। तो राखी जी, चूँकि ये महिलाओं का कार्यक्रम है तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि घर बैठे रोज़गार के जो विभिन्न तरीके हैं वो महिलाओं के लिए किस तरह से लाभकारी हो सकते हैं?
0: महिलाओं के के लिए ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार सिर्फ पैसा कमाने का ही जरिया नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है
1: जी।
0: इसके महत्व को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि इससे अपनी पहचान मिलती है, एक गृहिणी के बजाय अपनी एक स्वतंत्र पहचान मिलती है। और जब वह हुनर के जरिए, अपने हुनर के जरिए कमाती है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी जरूरतों या जो उनकी ख्वाहिशें रहती है उसके लिए किसी के आगे आप वो हाथ नहीं फैलाना पड़ता उनको। तो पैसे पास होने से अगर आर्थिक स्थिति उसकी अपनी मजबूत रहती है, पैसे पास होते हैं उसके, तो वो अपना फैसला खुद ले सकती है। और जो बड़े फैसलों में महिला की बात को अहमियत भी मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: परिवार की देखभाल, बच्चे, बुजुर्ग, रसोई सब संभालना होता है उसको, तो कुछ भी काम करना मुमकिन नहीं होता बाहर जा करके। तो इस तरह से तो एक महिला के लिए घर बैठे रोजगार कमाना बहुत ही अच्छा साधन है। और बाहर जाने आने जाने के समय सुरक्षा की चिंता भी रहती है, कहीं ट्रैवलिंग करना है तो उसका खर्चा है, कब आना है, कब जाना है, इस तरह से की झंझट से वो बच जाती है। और पति की नौकरी अगर चली गई है या बीमार हो गए हैं तो समय पर घर बैठे रोजगार पूरे परिवार को टूटने से बचाता है। वो अगर कमाती है तो परिवार भी बिखरने से बच जाता है। महिलाएं अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की अच्छी सेहत, अच्छी शिक्षा, इस पर खर्च करती हैं। तो कहा जाए तो जब एक पुरुष कमाता है तो एक व्यक्ति कमाता है, और लेकिन जब एक महिला घर बैठ के कमाती है तो पूरा परिवार सशक्त हो जाता है।
1: जी, बहुत बढ़िया।
0: तो इस तरह से जो घर बैठे कमाई का जरिया है वो महिलाओं के लिए तो बहुत ही खास हो जाता है। उसके लिए एक समझिए तो एक आजादी का एक जरिया है कि वो अपने अपनी जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं, जो उनकी उनके जो सपने होते हैं वो उनको पूरा कर सकती है और घर बैठे पैसे कमा सकती है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई राखी जी। महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार के तरीके बहुत उनके लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो घर बैठे रोजगार अगर हम शुरू करें या शुरू करना कोई चाह रहा है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या जोखिम हो सकते हैं इस रास्ते में, ये हमें बताएं।
0: घर बैठे रोजगार शुरू करते समय जितनी संभावनाएं आपको दिखती हैं उतनी ही चुनौतियां भी आती हैं। तो सफल होने के लिए इन सावधानियों और परेशानियों को समझना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: जैसे कि काम से पहले

0: पैसे मांगने वाली कंपनियां जो होती है या रजिस्ट्रेशन फीस के जो मांगती है, तो उसके झांसे में आने से बचे, फ्रॉड से बचे, और जो भी दस्तावेज होते हैं उसकी जांच आप जरूर कर ले। किसी भी कंपनी के साथ अगर ऑनलाइन जुड़ रही हैं आप, तो उसके पहले उसकी क्या सरकारी मान्यताएं हैं, उसकी रिव्यू क्या है, इन सब की जानकारी जरूर आप इकट्ठा कर ली। अपनी बैंकिंग की जो जानकारी है, आधार हो गया या ओटीपी हो गया, तो इसी किसी अनजान व्यक्ति से साझा ना करें। काम शुरू करने से पहले पेमेंट की जो शर्त है और जो डेडलाइन है, समय जो है, उसको लिखित में तय करें। मुजवानी इससे डील ना करें और क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखें। ऑफलाइन काम जैसे कि जो अचार पापड़ बनाते हैं या पैकिंग का काम जो हो गया इस तरह के, तो उसमें आप क्वालिटी और साफ सफाई से बिल्कुल भी समझौता नहीं करें। शुरुआत में आपको बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, कच्चा माल खरीदने या जरूरी मशीन जैसे कि सिलाई मशीन या इसके बजट में दिक्कत आ सकती है, या घर के कामों और बिजनेस के समय के बीच संतुलन बनाना थोड़ा सा दिक्कत होता है शुरू शुरू में। तो सामान तो बन जाता है, लेकिन ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए और बेचने में तो समय लगता है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। शुरुआत में हो सकता है कि आपको परिवार का सपोर्ट मिले भी ना मिले भी, तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। घर में लगातार अकेले काम करने से थकान भी होता है, मानसिक थकान हो जाता है, सोशल लाइफ जो होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस तरह से थोड़ी जोखिम तो है इसमें, लेकिन आपको ये करना होगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी और हर चीज में सावधानियां बरतनी होगी। और जितने भी जो दस्तावेज होते हैं, मैंने पहले भी कहा, उसको आप बिल्कुल सही रखें, उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से करके ही आप आगे बढ़ें।
1: जी, यानी कि जोखिम तो हर काम में होते हैं, तो जैसे कि घर बैठे रोजगार के जो तरीके हैं, अगर आप शुरू करना चाहती हैं बहनों, तो उसमें भी आपको परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन जैसे कि राखी जी ने कहा कि आप धैर्य रखें, हिम्मत बनाए रखें और आने वाली परेशानियों का सामना करें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाभप्रद बातें आपने बताई। और बहनों, आपने जाना राखी जी से कि घर बैठे हम कैसे रोजगार शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं रोजगार से और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। राखी जी, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, घर बैठे रोजगार के तरीके। हमारी आज की मेहमान थी राखी माहेश्वरी, जो एक समाज सेविका हैं, और इनसे बातें कर रही थी सुभाषिनी। और अब सुनते हैं ये गीत।

0: तो कैसा लगा गीत सुभाषिनी?
1: बहुत ही खूबसूरत गीत तुमने सुनवाया निधि। अब और बढ़ते हैं
0: और
1: आगे
0: एक
1: कार्यक्रम।
0: छोटी सी जानकारी है जो हमें बहनों को देनी है।
1: हाँ,
0: और आज बहुत ही ज्यादा इसका महत्व बढ़ गया है, तो ये है बहनों वर्क फ्रॉम होम के लाभ कि कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे काम करना आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये एक अच्छा विकल्प बन गया है, जिससे हम नौकरी भी कर सकते हैं और हमें दफ्तर जाने की जो असुविधा है या परेशानी है उससे भी हम बचे रहते हैं।
1: और वर्क फ्रॉम होम जो होता है वो कर्मचारियों को अनुकूल माहौल में काम करने और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभालने की सुविधा भी देता है। और आने जाने में तो समय लगता ही है जैसा कि तुमने कहा, साथ ही परिवहन में भी खर्च कम होता है। तो इस तरह से पेट्रोल डीजल ईंधन की बचत से देश को विदेशी मुद्रा की बचत भी होती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल, अगर हम घर से ही काम करते हैं तो आने जाने से हम बचते हैं, और घर पर ही रहकर काम करते हैं तो हमें जो वाहन है हमारे कार स्कूटर वगैरह उनका इस्तेमाल कम करना पड़ता है, जिससे पेट्रोल डीजल और बाकी ईंधन की भी बचत होती है। और घर से काम करके लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जैसे बेहतर तरीके से काम करते हैं क्योंकि ऑफिस का जो शोर शराबा है या कुछ रुकावटें हैं वो नहीं होती, और कर्मचारी जो है ज्यादा एकाग्रता से काम करते हैं, अपने काम पर फोकस भी करते हैं ज्यादा।
1: बिल्कुल, तो इसी के साथ ही निधि कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। बहनों से इजाजत लेने से पहले बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की और आपकी सखी सुभाषिनी,
0: और निधि को अब दे विदा। नमस्कार, नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
0: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
0: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
0: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
2: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं वर्षावन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
2: जी, यही कारण है अजीत जी के चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है। उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
0: जी।
2: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि, श्रोताओ, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
2: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं बिमलेश जी से।
2: जी श्रोताओ, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
2: जी।
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
2: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
2: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
3: जोजो एक सफेद कुत्ता था। एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
4: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
4: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
3: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
4: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो पीला हूं।
4: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे, गुब्बारे,
4: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं,
4: मैं तो लाल हूं। घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
4: बेचारा जोजो। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
0: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
2: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
1: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
0: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे बार भी नहीं लगी। अरे
2: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
2: हा?
4: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
3: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली।
0: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
4: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा, गौरमा,
5: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
5: कौन लोग आ रहे हैं?
4: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
5: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
5: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
6: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
5: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
7: बिल्कुल,
5: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
6: हाँ गौरमा, हाँ, सब तैयार हैं।
7: किसी
6: भी हाल में कटने
7: नहीं कटने देंगे।
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी

0: तैयार खड़े थे।
1: अरे क्या कर रहे हो?
2: भूखे ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
0: अरे भाई कौन है? रुको इस पर जाएंगे पेट से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
2: दोनों आगे बढ़ो।
0: अरे कहाँ से?
2: दो मिनट की बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
4: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
5: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
2: तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो
6: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो।
6: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
0: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
6: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
6: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं

हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भूराजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

0: मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement.
2: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना मैं आपको विश्वास से कहता हूं ये हमारी गारंटी है।
1: India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at a moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of growing geopolitical uncertainty, energy insecurity and economic fragmentation, the world faces a defining choice of either retreating into narrow national approaches or strengthening partnerships. In the article published today in a national daily, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. A high-level meeting of the Central Zonal Council has started at Jagdalpur in Chhattisgarh. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah chairing the meeting. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Chhattisgarh Chhattisgarh are participating in the 26th meeting of the Central Zonal Council. Union Home Secretary, Director of the Intelligence Bureau, Directors General of Police of the four states, along with senior police and administrative officials, are also attending the meeting. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the November 2025 order and directed authorities to confine such dogs to shelters. The court cited deeply disturbing incidents of dog attacks on children, elderly persons and travellers and said the menace had reached critical public areas, including airports and residential colonies. Petrol and diesel prices have been hiked by around 90 paise per litre today, marking the second increase in less than a week. In Delhi, petrol now costs 98 rupees 64 paise per litre, while diesel is priced at 91 rupees 58 paise. The latest hike comes days after a 3 rupee per litre increase on May the 15th, the first fuel price revision in over 4 years. The rise follows a sharp surge in global crude oil prices amid the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Defense Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defense cooperation between the two countries. The defense minister said in a social media post that cooperation is a key pillar of the enhanced comprehensive strategic partnership between the two countries. He said India and Vietnam share a strong bond rooted in mutual trust, shared values, and close cooperation in defense, security, and regional stability. Mr. Singh also held a bilateral meeting with his Vietnamese counterpart, General Phan Van Chiang. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% in the afternoon session today. The Sensex rose 262 points to 75,577, while the Nifty added 75 points to 23,725 when reports last came in. On the sectoral front, IT, realty and utility stocks were driving the market higher. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता के लिए 1 जून से देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। भुवनेश्वर में जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम में नक्शा पास की व्यवस्था पर जताई नाराजगी, कहा कार्यपालक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा के लिए अधिक उपयुक्त। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित, नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले समारोह में होंगे पुरस्कृत। JBVNL ने शुरू किया जन समस्या निवारण केंद्र, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई घोषणा, कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी टीम में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से 1 जून से देश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक गांवों में जाकर मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को संतुलित खाद उपयोग के लिए जागरूक करेंगे।
4: कृषि विभाग ने ICR ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो तत्व है उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे।
3: इसे लेकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे है। इस बढ़ोतरी के बाद झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 76 पैसे और डीजल की कीमत

0: 96.52 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यह वृद्धि 15 मई को हुई 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कुछ दिनों बाद हुई है। यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होमुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: झारखंड उच्च न्यायालय में रांची नगर निगम में नक्शा पास से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि रांची नगर निगम में प्रति नियुक्ति पर तैनात कार्यपालक अभियंता के स्थान पर सहायक नगर नियोजक यानी ATP को नक्शा पास का कार्य सौंपा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में रांची में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ग्रामीण जनता को वनों से जोड़ने और संयुक्त वन प्रबंधन समिति के साथ वन सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में उन्होंने एलिफेंट कॉरिडोर पुनर्जीवित करने, मुआवजा मामलों का त्वरित निपटारा करने, लैंड बैंक बनाने और फॉरेस्ट क्लियरेंस में तेजी लाने के साथ वन भूमि अतिक्रमण व अवैध खनन रोकने पर जोर दिया। साथ ही इको टूरिज्म, बुनियादी ढांचा विकास और मानव पशु संघर्ष कम करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया ताकि वनों और वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। संसद रत्न अवार्ड समिति ने संसद में जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने, सक्रिय भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस सम्मान को गोड्डा और झारखंड की जनता के विश्वास और आशीर्वाद का सम्मान बताते हुए इस क्षेत्र की जागरूक और संघर्षशील जनता को समर्पित किया है। संसद रत्न पुरस्कार समारोह जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम मुख्यालय स्तर पर रांची में जन समस्या निवारण केंद्र की शुरुआत की है। उपभोक्ता मोबाइल नंबर 9031110120 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऊर्जा सचिव के श्रीनिवासन ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
2: बिजली विभाग के जन समस्या निवारण केंद्र आज कुसई कॉलोनी रांची में हम लोग शुभारंभ किए। ये राज्य स्तर के हम लोग इसको तैयारी किए हैं, आज से ये संचालन शुरू हो गया है। इसमें हमारे बिजली विभाग के संबंधित कितने भी आपका सुझाव है, समस्या है, जो भी आपकी जानकारी आप दे सकते हैं, उसका तुरंत जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर हल कर सकते हैं।
0: टाटा स्टील वित्तीय वर्ष 2026-27 तक डिजिटलीकरण और AI आधारित कार्य कुशलता के जरिए 7100 करोड़ रुपए की लागत कम करेगी। कंपनी के MD व CEO TV नरेंद्रन ने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और ऑटो सेक्टर की मजबूती से मांग बेहतर बनी हुई है। कंपनी गैल्वेनाइज्ड पैकेजिंग, ट्यूब और वायर जैसे डाउनस्ट्रीम व वैल्यू एडेड स्टील उत्पादों में विस्तार कर रही है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भू माफियाओं के अवैध कब्जे की शिकायतों पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने राजस्व और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को जमीन दलालों पर कानूनी कार्रवाई करने और सोना हाथों निवासी प्रकाश कुमार महतो को जमीन के पंजी 2 में सुधार नहीं होने की शिकायत पर जल्द निष्पादन का निर्देश दिया है। खलारी के एनके क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीआईएसएफ ने केडीएच और डकरा इलाके में विशेष अभियान चलाकर लगभग 3 टन अवैध कोयला जब्त किया है। सीआईएसएफ अधिकारियों ने कहा कि कोयला चोरी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ उत्पादन व्यवस्था के लिए भी खतरा है, इसलिए तस्करी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र से पुलिस एक युवक और युवती का शव बरामद किया है। खूंटी के डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि दोनों युवक युवती छौ नृत्य देखने गए थे और देर रात से लापता थे।
3: विशु पाहन और सोमी मुंडू जो कि जीवरी के रहने वाले हैं, अन्य लोगों के साथ छौ नृत्य देखने गए थे रात में। सुबह सूचना मिला कि ये दोनों घर नहीं आए हैं, गायब हैं। खोजबीन के उपरांत मेला से कुछ दूरी पर जंगल झाड़ी में दोनों का लाश बरामद हुआ। दोनों का उम्र करीब 17-18 साल है और इन लोगों के सिर और गर्दन में धारदार हथियार से हमला किया गया। धारदार हथियार का निशान है मार करने का।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 335 अंक की वृद्धि के साथ 75,657 जबकि निफ्टी 111 अंक बढ़कर 23,762 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,76,000 रुपए प्रति किलो है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरिंग भी शामिल हैं। तीनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य के खेल प्रेमियों और हॉकी खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता के लिए 1 जून से देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। भुवनेश्वर में जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम में नक्शा पास की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। कहा कार्यपालक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा के लिए अधिक उपयुक्त। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित। नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले समारोह में होंगे पुरस्कृत। JBVNL ने शुरू किया जन समस्या निवारण केंद्र। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई घोषणा। कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी टीम में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में सिद्धेश्वरी देवी से कजरी और राग झिंझोटी।

उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी के अंतर्गत आपने सुना सिद्धेश्वरी देवी से कजरी और राग झिंझोटी। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत में गजल। पहली गजल है गुलाम अली की आवाज में।

उसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे दिल्ली केंद्र से, थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: 8:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend third India-Nordic summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilised or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण सुरंग ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट

0: 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
1: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
2: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 59 पैसे और डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109 रुपए 70 पैसे और डीजल की 96 रुपए 7 पैसे दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 49 पैसे और डीजल की 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाई बहनों का, सभी श्रोताओं का कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूँ प्रतिमा शर्मा।
2: बिल्कुल, और मैं हूँ गौतम झा, और मेरा भी नमस्कार श्रोताओं।
1: बिल्कुल, और गौतम, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जैसा कि अभी समाचारों में भी हम सुन रहे थे कि आने वाले 3 दिन जो है येलो अलर्ट में है, क्योंकि लू चलने की बड़ी संभावनाएं हैं। और ऐसे में फलदार वृक्षों या हरे भरे वृक्ष हों, वो हमारे पंथी के लिए, हमारे राहगीरों के लिए एक बहुत ही बड़ा साधन बनता है छाया का।
2: बिल्कुल, पशु पक्षियों के लिए भी बात कर सकते हैं आप कि उनके लिए भी छायादार वृक्ष बहुत जरूरी है। और हम लोगों का कार्यक्रम जो है वो किसान की बात कार्यक्रम का नाम ही है, तो और किसानों के जीवन में भी अगर आप देखें, बगान का बहुत ही महत्व है, चाहे आप आर्थिक दृष्टि से देखें और सामाजिक दृष्टि से भी आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य खेती की तुलना में बागवानी से अधिक लाभ प्राप्त होता है।

मेरा रंग दे बसंती चोला। जी हाँ, बसंती रंग साहस, स्वतंत्रता और बलिदान का प्रतीक है, जो देश की खातिर मर मिटने की भावना को भी दर्शाता है। ये गीत था फिल्म शहीद का, देव कोहली के बोल थे, संगीत था आनंद राज आनंद का, आवाजें थी उदित नारायण और हंस राज की।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जय भारती में। और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आभा। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, हसरत जयपुरी का लिखा और संगीत कल्याण जी आनंद जी का, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है गीत।

अगला गाना आनंद बख्शी का लिखा हुआ फिल्म दो रास्ते से मोहम्मद रफी की मखमली आवाज में, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। हजारीबाग में केंद्रीय सड़क निधि योजना से 107 करोड़ की लागत से बनने वाली 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का शिलान्यास हो गया है। भारत माता चौक से सिंदूर बाईपास तक इस सड़क का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण होगा। सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का आभार जताया है।
1: ये लगभग 10 किलोमीटर का है और लगभग 100 करोड़ की ये जो है योजना है, पूरा हजारीबाग इसी से कनेक्ट होता है। यहाँ से लेकर के नगवा तक में तो जितना बाईपास हुआ है, इस फोर लेन से लेकर उस फोर लेन तक का जो कनेक्टिविटी है अभी किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है और इसके बन जाने से यहाँ के लोगों को काफी रिलीफ होगा।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मंत्री ने बताया कि बैठक में राज्य के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने रिम्स 2 और नए मेडिकल कॉलेजों की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी। राहुल गांधी ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए जनता के बीच सक्रिय रहने की सलाह दी। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के गर्भवती होने के मामले को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने जेल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की। राज्यपाल ने मामले को संवेदनशील बताते हुए उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। सरायकेला खरसावां में 30 और 31 मई को भाजपा का 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। जिलाध्यक्ष हरेकृष्ण प्रधान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलकर मार्गदर्शन लिया और उन्हें आमंत्रित किया। इस शिविर में 150 कार्यकर्ता पार्टी इतिहास, सोशल मीडिया और AI की तकनीक सीखेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला में जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हुआ है। उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि 25 मई तक जिले के 616 जनजातीय बहुल गांवों में लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगेंगे। आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य जाँच और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव जो 19 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा, तो हमारे जिले के 616 ग्राम जो जनजातीय बहुल ग्राम है, जनभागीदारी के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा और उन ग्रामों में जो पूर्व के कार्यक्रम के तहत डीए जगुआ जनमन कार्यक्रम के तहत इस एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है, इसमें प्रयास रहेगा कि उनको विभिन्न इंटरवेंशन में सैचुरेशन मोड पर लाया जा सके।
0: बोकारो में बढ़ती बाइक चोरी के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। BSCT थाना पुलिस ने एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। DSP आलोक रंजन ने बताया कि आरोपियों पर 3 अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि ये आरोपी झाड़ियों में छिपकर अपराध कर रहे थे। इनके पास से 5 मोबाइल, 6 सिम और 3 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
3: कर्माटांड थाना अंतर्गत रत्नोटी पहतिया टोला के पास से 4 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई।

0: इसके बाद उसी क्रम में एक और सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग उसको सिम प्रोवाइड करने के लिए उस क्षेत्र में आए हुए हैं। इस कल की गिरफ्तारी में कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 2 केस इसमें दर्ज किया गया। के पास से जो कुल मोबाइल बरामद हुआ है, कुल 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 3 ATM, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 मोटरसाइकिल भी जब्ती हुई है।
1: झारखंड की युवा निशानेबाज देवासी हेमब्रम ने थाईलैंड इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। जामताड़ा के गरीब परिवार से आने वाली देवासी को इस ऐतिहासिक सफलता पर आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सम्मानित किया। उन्होंने राज्य सरकार से ग्रामीण और गरीब खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं देने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी गई है। उनके साथ अनुभवी डिफेंडर निक्की प्रधान और युवा खिलाड़ी दीपिका सोरेन भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इसे राज्य के लिए गौरवशाली पल बताया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम लेकर के आएंगे कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी, लेकिन पहले ये संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं को आभा का नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची और मैं हूँ आपके साथ आभा और लेकर आई हूँ बेहद ही खास मस्ती से भरा शो शुरू की महफिल अंताक्षरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंताक्षरी में हम शुरुआत करते हैं माँ अक्षर से, तो लीजिए सुनिए माँ से।

अंताक्षरी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन गानों का सिलसिला आकाशवाणी रांची पर जारी रहेगा, कार्यक्रम रांची मेलोडीज में।

फिजाओं में गिटार की गूंज और दिल में सुरों का संगम। स्वागत है आप सबका रांची मेलोडीज के इस संगीतमय सफर में, जहां संगीत बोलेगा और रांची झूमेगी। तो चलिए शाम को और रंगीन बनाते हैं किशोर कुमार की आवाज से। बोल लिखे हैं अनजान ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने और फिल्म है याराना।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म एक दूजे के लिए। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, माफ कीजिएगा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और जिसमें अनूप जलोटा और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज आवा के साथ। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेहंदी रंग लाएगी से लता मंगेशकर की आवाज में, बोल अनजान के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म बेताब से सब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत आर डी बर्मन का।

रांची मेलोडीज़ में गानों का सफ़र यहीं तक। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ और सुरीली धुनों के साथ। तब तक के लिए आप हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े अपने पुराने आदेश में बदलाव की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरी में क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और दाल तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर छोटे खेतों को लाभदायक बनाना है। रांची में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वीडन, स्पेन और दावोस दौरों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1,30,000 करोड़ के निवेश और एआई हब बनाने के दावों के बावजूद जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। भाजपा ने इन विदेश यात्राओं के परिणामों पर सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को लेकर रांची में आज प्रेस वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग दोहराई। पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। चाईबासा एसपी अमित रेणु ने बताया कि केड़ाबीर गांव के पास तलाशी अभियान के दौरान यह गोलीबारी हुई। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। फिलहाल क्षेत्र में सघन तलाश अभियान जारी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम क्रीड़ा जगत, संकलन एवं वाचन अमित अखौरी का, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की।

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज सबसे पहले हम बातचीत करेंगे आईपीएल की। प्लेऑफ में आरसीबी पहली टीम बनी है, कोहली ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, इस पर चर्चा होगी। टीवी रेटिंग में इस बार आईपीएल थोड़ी पीछे चल रही है, सपाट पिच और ज़्यादा क्रिकेट होने की वजह से लोकप्रियता घटी है थोड़ी। इसके अलावा कुछ ऐसे कप्तान हैं जो अगले आईपीएल में या नहीं रह पाएंगे, उस पर भी चर्चा होगी। पर्सनालिटी में बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार की कि उन्होंने कैसे अपने आप को इस मुकाम पे लाया, उनका प्रदर्शन कितना अच्छा रहा। खास खास में फीफा वर्ल्ड कप की बात होगी, हाफ टाइम शो का आयोजन होगा और इसके अलावा जापान में क्रिकेट कैसे लोकप्रिय हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे और खेल खबरें तो होंगी ही। तो सबसे पहले बातचीत आईपीएल की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। रविवार को पंजाब को 23 रन से हराकर उसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम के 18 पॉइंट्स हैं। प्ले ऑफ मैच 26 मई से होंगे, फाइनल 31 मई को खेला जाना है। इससे पहले लीग मैच में आरसीबी ने पंजाब को 223 रनों का टारगेट दिया था। इसमें विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर के अर्धशतक हैं। कोहली ने आईपीएल इतिहास में 50 से अधिक रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया। अब वे 50

या उससे ज़्यादा रन की 138 साझेदारियों का हिस्सा हो चुके हैं। रोहित शर्मा 107 साझेदारियों के साथ दूसरे नंबर पे हैं। इसके अलावा कोहली ने 9वीं बार आईपीएल में 500 से ज़्यादा रन बनाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। डेविड वार्नर और केएल राहुल के साथ साथ ऐसे सीजन हैं। सबसे ज़्यादा 280 आईपीएल मैच खेलने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम हो गया है और इसमें भी उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। बाकी प्ले ऑफ टीमों की अगर चर्चा करें, तीन चार प्ले टीमों की, तो गुजरात के अभी 16 अंक हैं, टेबल में दूसरे स्थान पर है, एक मैच चेन्नई से बचा है। अगर हार गए तो भी बेहतर रन रेट से प्ले ऑफ में टीम चली जाएगी। हैदराबाद की बात करें तो 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है हैदराबाद की टीम, दो मैच बाकी हैं, एक जीते तो प्लस में नेट रन रेट से पहुंच जाएंगी टीम पहुंच जाएगी। राजस्थान रॉयल्स के 12 अंक हैं, टेबल में छठे स्थान पर है, दो मैच बाकी है और दोनों मैच जीतने जरूरी हैं। पंजाब 13 अंक हैं, एक मैच बचा है, अगर जीते तो 15 अंक होंगे, किस्मत दूसरों टीमों की हार जीत पर टिकी है। और चेन्नई के 12 अंक हैं, दो मैच बचे हैं, दोनों मैच जीतने होंगे लेकिन फॉर्म थोड़ा खराब है। तो अब देखना है दोस्तों कि 26 तारीख से जो प्ले ऑफ के मैच होंगे उसमें कौन कौन सी टीमें पहुंचती हैं और 31 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। अब हम बात करें आईपीएल की, जिसमें कि टीवी का घाटा हो रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन्हें फायदा हो रहा है। टीवी की औसत व्यूअरशिप 26% घटी है लेकिन डिजिटल रीच 15% बढ़ी है। आईपीएल के 19वें सीजन के आंकड़ों ने बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर की चिंता बढ़ा दी है। मैदान पर भले ही रनों की बारिश हो रही है लेकिन टीवी स्क्रीन से दर्शक धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और ये गायब होने का प्रतिशत 26 तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन के पहले फेज में टीवी रेटिंग 18.8 और औसत व्यूअरशिप 26% की भारी गिरावट दर्ज की गई। विज्ञापन के मोर्चे पर भी झटका लगा है, जहां टीवी विज्ञापनों में 31% की कमी आई है। इसके विपरीत डिजिटल ब्रॉडकास्टर जो हैं उनकी एक अलग ही ट्रेंड दिख रही है। इसके अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईपीएल की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है और इसकी कुल रीच 110 करोड़ तक पहुँच गई है। तो टीवी पे विज्ञापनों की भी कमी हो रही है और व्यूअरशिप भी कम हो रहा है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उस पे लोगों की व्यूअरशिप बढ़ी है। टीवी व्यूअरशिप घटने की बहुत सारी वजह हैं, उस पे हम चर्चा करते हैं। एक तो पहली बात यह है कि एक तरफा मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, बल्ले और गेंद के बीच जो स्पर्धा है वो खत्म होती दिख रही है। विशेषज्ञों और फैंस का मानना है कि आईपीएल के पीछे अब केवल बल्लेबाजों के लिए बन गई है। मैच में 220 से 260 तक के स्कोर अब बहुत जनरल हो गए, बहुत सामान्य हो गए। जब बल्ले और गेंद के बीच संघर्ष ही जब खत्म हो जाए तो हर गेंद बाउंड्री के पार जाने लगती है और ऐसे में खेल में अनिश्चितता खत्म हो जाती है। इंपैक्ट प्लेयर नियम ने गेंदबाजों की भूमिका को और भी कम कर दिया है, जिससे मैच नीरस और एकतरफा होने लगा है। अब बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं और दोनों टीमों के लिए यहाँ पे दिलचस्पी वाली कोई बात नहीं रह रही। एक बात दर्शकों की थकान से भी जुड़ी है कि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद इतने बड़े टूर्नामेंट का बोझ दर्शकों पर डाला गया है। साल भर क्रिकेट की अधिकता भी दर्शकों को उबने के लिए छोड़ रही है। आईपीएल का आयोजन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद हुआ और लगातार क्रिकेट देखने के कारण दर्शकों में वो उत्साह नहीं बचा है जो पहले हुआ करता था। अब आईपीएल में 10 टीमें हो गई और 74 मैच खेले जाते हैं और यह लीग 2 महीने से ज़्यादा चलती है। SA20 मेजर लीग और द 100 जैसी दुनिया भर की तमाम लीग के कारण भी क्रिकेट में कुछ नयापन नहीं रह गया है। इसके अलावा एक बात और है कि जो फैंटेसी गेमिंग पे बैन लगा है उससे क्या हो रहा है कि रियल मनी गेमिंग ऐप हटने से क्रेज कम हुआ है। इन्वेस्टेड दर्शक व्यूअरशिप गिरने की सबसे प्रमुख वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 सरकार द्वारा कुछ रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर

बैन लगा देने से उस बड़े दर्शक वर्ग को मैच से दूर कर दिया है जो केवल अपनी टीम और इनाम के लिए ही मैच से जुड़े रहते थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो इस गेमिंग ऐप्स के थ्रू पैसा भी कमा रहे थे। ये ऐप न केवल विज्ञापन दाता के लिए बल्कि दर्शकों को भी अंतिम गेंद तक बांधे रखते थे। अब वह वित्तीय उत्साह खत्म होने से भी टीवी के सामने दर्शकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन सरकार की नीतियों के अंतर्गत ये बातें आती हैं, इसलिए इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जो हो सकता है कि अगले सीजन में वो टीमों के कप्तान नहीं रहे। इसकी वजह है खराब प्रदर्शन या कुछ विवाद भी इसकी वजह है। जैसे अक्षर पटेल की बात करें, खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। उन्होंने 9 पारियों में 112.5 शून्य की धीमी स्ट्राइक से 100 रन बनाए और 12 मैचों में केवल 10 विकेट लिए। वे फैसलों के लिए भी कोच पर निर्भर दिखे। अभिषेक पटेल को नज़रअंदाज करना और अनुभवहीन साहिल परख को सीधे उतारने जैसे उनके फैसले भी सवालों के घेरे में रहे। अब देखना है कि अगले आईपीएल में वो टिके रहते हैं कि नहीं। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो 27 करोड़ की भारी फीस मिली उन्हें, पर स्ट्राइक रेट सिर्फ 138 की रही। लगातार 2 सीजन टीम के क्वालिफाई न करने से मालिक का, जो फ्रेंचाइजी के मालिक होते हैं, उनका नाराज होना स्वाभाविक है। 27 करोड़ की भारी कीमत पाने वाले पंत ने 11 मैचों में 138 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 251 रन बनाए हैं और पूरे टूर्नामेंट में महज 9 छक्के लगाए हैं। धीमी स्ट्राइक रेट वाले आर्सेन कुलकर्णी से ओपनिंग कराना और बिना पावर गेम वाले आयुष बदोनी को टॉप ऑर्डर में भेजने जैसे फैसलों ने उनकी रणनीतिक समझ पे सवाल खड़े कर दिए हैं। अजिंक रहाणे कोलकाता के कप्तान हैं और केकेआर ने मजबूरी में रहाणे को कप्तान बनाया था क्योंकि उनके पास कोई और विश्वसनीय विकल्प नहीं था। इसमें हेड कोच और उनके पूर्व साथी अभिषेक नायर का भी बड़ा हाथ था। 37 साल के रहाणे और युवा अंग क्रिस रघुवंशी दोनों ने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की, लेकिन इनकी धीमी गति ने हर मैच में टीम की लय बिगाड़ दी। रघुवंशी ने 139 की स्ट्राइक रेट से 340 रन बनाए, जबकि रहाणे ने 133 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 237 रन ही जोड़े। अब बात करते हैं पैट कमिंस की। हैदराबाद के से जुड़े हैं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस इस सीजन शुरुआती 7 मैचों में नहीं खेले। इस दौरान युवा भारतीय ईशान किशन ने कप्तानी करते हुए टीम को 4 मैच जिताए। मतलब साफ है कि फ्रेंचाइजी को ईशान के रूप में कप्तान का एक विकल्प मिल गया। मौजूदा सीजन में कमिंस के नेतृत्व में टीम ने 5 में से 3 मैच जीते और इन मैचों में कमिंस ने सिर्फ 5 विकेट लिए और औसत 33 से ज़्यादा रहा। ऐसे में ईशान बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं और हो सकता है कि अगले आईपीएल में पैट कमिंस हैदराबाद टीम के कप्तान न रहें। हार्दिक पांड्या की बात करें जो मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, टीम ने इस सीजन के शुरुआती 11 मैच में से 3 जीते और सीजन से बाहर होने वाली दूसरी टीम ये बनी। पिछले साल भी टीम मुश्किल से प्लेऑफ में पहुंची थी। ऐसे में संभावना है कि अगले साल हार्दिक से भी टीम का नेतृत्व छीन लिया जाए। वह पिछले 2 मैचों में चोट की वजह से नहीं खेले, जबकि इस दौरान नेट्स में अकेले ट्रेनिंग करते दिखाई भी दिए। प्रदर्शन भी औसत रहा। चर्चा है कि कुछ टीमें हार्दिक को ट्रेड करने की कोशिश भी कर रही हैं। अब बारी है रियान पराग की। राजस्थान के कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में टीम ने 4 मैच जीतकर शुरुआत बहुत शानदार की, लेकिन उसके बाद 7 मैच में से 5 हारे। 2 बार टीम 220 से अधिक रन नहीं बना पाई। रियान 10 मैच में 23 के साधारण औसत से 207 रन ही बना सके। तो दोस्तों, ये तो हुए आईपीएल की बातें और अब हम पर्सनालिटी में बात करने जा रहे हैं भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली के। तो सबसे पहले बात भुवनेश्वर कुमार की। इनके साथ एक बात यह रही कि आरसीबी से खेल रहे भुवनेश्वर ने 21 विकेट लेकर इस आईपीएल में सबसे सफल गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया है। तेज रफ्तार, आक्रामक बयानबाजी से दूर रहते हैं। अनुशासन और धैर्य ने इन्हें सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाया है और ज़रूरत के हिसाब से खेल
बदल कर ये घातक साबित हो रहे हैं। आईपीएल 2026 में जब भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मुश्किल वक्त में विकेट की जरूरत पड़ी तो कप्तान रजत पाटीदार की नज़र सबसे पहले एक ही खिलाड़ी पर गई और वो हैं भुवनेश्वर कुमार। उम्र 36 साल, शरीर पहले से जैसा तेज नहीं लेकिन अनुभव और दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत। मुंबई के खिलाफ रायपुर में आखिरी ओवर में रोमांच खत्म करते हुए मुश्किल से एक दिन हुआ था पर चार विकेट लेने और बल्लेबाजी से आखिरी ओवर में अहम रन बनाने वाले भुवी के चेहरे पर न कोई अतिरिक्त उत्साह था और न कोई दिखावा। वो शांति से बैठे थे जैसे यह सब उनके लिए सामान्य बात हो। हाल ही में आर अश्विन ने मजाक में कहा था कि भुवनेश्वर को फिर से भारत की T20 टीम में शामिल होना चाहिए। जब यह बात उनसे पूछी गई तो वो मुस्कुराए और बोले कि अश्विन को ही सेलेक्टर बना दो। यही सहजता भुवनेश्वर की सबसे बड़ी पहचान है और इस सीजन उनके नाम 21 विकेट हैं। वह पर्पल कैप होल्डर भी बन गए हैं। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड भी इस साल उन्होंने ही बनाया। लेकिन भुवनेश्वर के लिए आंकड़ों से ज़्यादा अहम है मानसिक संतुलन। वे कहते हैं कि जिस दिन मुझे भारतीय टीम से बाहर किया गया उसी दिन मैंने उसे स्वीकार कर लिया। 10 साल तक सब कुछ देखा इसलिए अलग होना आसान था। कभी सिर्फ स्विंग गेंदबाज माने जाने वाले भुवनेश्वर ने अब खुद को T20 के हिसाब से बदल लिया। उनकी नकल बॉल और डेथ ओवर गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए परेशानी बनी हुई है। वे मानते हैं कि T20 क्रिकेट पूरी तरह से बदल चुका है। पहले 200 रन बनते थे तो लगता था मैच खत्म हो गया, अब 200 भी छोटा स्कोर लगता है। बल्लेबाज बदल रहे हैं इसलिए गेंदबाजों को भी बदलना पड़ता है। हालांकि इतने बदलाव के बावजूद भुवनेश्वर खुद को बदला हुआ खिलाड़ी नहीं मानते। उनका कहना है कुछ नया नहीं किया। वह कहते हैं लोग सोचते हैं मैं कुछ अलग कर रहा हूं लेकिन मैं वही पुरानी चीज़ें कर रहा हूं जो करता रहा हूं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि विकेट मिल रहे हैं। विकेट से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से गेंद सही जगह पड़ जाती है। यही भुवनेश्वर की असली कहानी है। तेज़ रफ्तार नहीं है, आक्रामक बयान नहीं है, सिर्फ अनुशासन और धैर्य और लगातार मेहनत करना उनकी पहचान है। शायद यही वजह है कि बढ़ती उम्र में भी वे आईपीएल के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए हैं। और अब बात करते हैं विराट कोहली की। 2026 में विराट कोहली का किंग अवतार फिर से छा गया दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपनी क्लासिक आक्रामक शैली और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से आलोचकों को करारा जवाब दिया। लगातार 2 मैचों में 0 पर लौटने के बाद बुधवार को कोहली ने केकेआर के खिलाफ नाबाद 105 रनों की पारी खेली और कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। अभी तक T20 में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ियों में पहला नंबर क्रिस गेल का है जिन्होंने 22 शतक बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम ने 13, विराट कोहली ने 10, डेविड वार्नर ने 10 और अभिषेक शर्मा ने 9 शतक लगाए हैं। अब कोहली के नाम आईपीएल में 21 प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब दर्ज हो गए हैं। किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा यह संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा है। रोहित शर्मा के नाम भी इतने ही अवार्ड हैं। बुधवार को कोहली ने 409 पारियों में 14,000 रन पूरे किए तो विश्व रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 423 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो दोस्तों पर्सनालिटी में हमने बातें की आज भुवनेश्वर कुमार की, जिन्होंने अपने धैर्य अपने प्रदर्शन के बल पर आईपीएल में अपना एक मुकाम हासिल किया है। और उसी तरह से विराट कोहली भी रहे जिन्होंने आईपीएल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और खास खास में आज हम बातें करते हैं फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल प्रेमियों के लिए इस साल का वर्ल्ड कप सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि संगीत के इतिहास का सबसे बड़ा गवाह बनने जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहली बार सुपर बॉल की तर्ज पर एक भव्य हाफ टाइम शो का आयोजन किया जा रहा है। 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल के दौरान पॉप क्वीन मैडोना, लैटिन सुपरस्टार शकीरा और के पॉप दिग्गज BTS परफॉर्म करेंगे। 49 साल की कोलंबियाई पॉप सिंगर शकीरा अपना नया आधिकारिक वर्ल्ड कप गाना
डाई डाई इटालियन शब्द

जिसका अर्थ होता है चलो चलो, रिलीज कर रही हैं, और उनके साथ नाइजीरियाई सिंगर बर्नार्ड बाय भी नजर आएंगे। 67 साल की मैडोना 15वीं एल्बम कन्फेशंस 2 के रिलीज के साथ वर्ल्ड कप के मंच पर अपना जादू बिखेरेंगी। हाल ही में कोचेला में उनके सरप्राइज परफॉर्मेंस ने पहले ही काफ़ी चर्चा बटोरी है। और बीटीएस की बात करें तो अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद वापसी कर रहा दक्षिण कोरियाई बैंड बीटीएस अपने 85 एक दिवसीय वर्ल्ड टूर के बीच इस फाइनल में परफॉर्म करेगा। कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन द्वारा क्यूरेट किए गए इस शो के जरिए फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड के लिए $100 मिलियन करीब 957 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, और यह राशि दुनिया भर के बच्चों की शिक्षा और बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये हाफ टाइम शो 11 मिनट का होगा। वर्ल्ड कप को लेकर वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के बीच वैश्विक संगठन फीफा प्रो ने एक रिपोर्ट पेश की है, और इस रिपोर्ट के अनुसार टूर्नामेंट के दौरान गर्मी का खतरा रहेगा। कुल मैचों में लगभग 25% मुकाबले अत्यधिक गर्मी और उमस के होने के कारण प्रभावित होंगे, और जिन मैचों में गर्मी का जोखिम 10% से अधिक है उनमें से एक तिहाई ऐसे स्टेडियम में जहां एसी नहीं है, इनमें मियामी, कंसास सिटी, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी जोर शोर से चल रही है दोस्तों, और अब खास खास में हम बात करने जा रहे हैं जापान में कैसे लोकप्रिय हो रहा है क्रिकेट। बेसबॉल के दीवाने जापान में अब क्रिकेट की आवाज भी सुनाई देने लगी है। नागोया शहर से करीब 40 मिनट दूर बने कोरोगे स्पोर्ट्स पार्क में जब बल्लेबाज ने गेंद को जोरदार छक्का लगाकर मैदान के बाहर रेत और झाड़ियों तक पहुंचाया तो दर्शकों की तालियों से स्टेडियम गूंज उठा। लेकिन साथ ही साथ नियमों की किताब भी पकड़े हुए थे खिलाड़ी, उन्हें खेल समझ नहीं आ रहा था लेकिन रोमांच जरूर महसूस हो रहा था। इसकी वजह क्या है कि सितंबर में होने वाले एशियन गेम से पहले जापान में क्रिकेट को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। पहली बार यहां क्रिकेट के लिए खास मैदान तैयार किया गया है, और इसी मैदान पर 2028 T20 वर्ल्ड कप के ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर मैच खेले जा रहे हैं। इन मुकाबलों में जापान, वानुआतु, फिजी, समोआ, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, कुक आइसलैंड और दक्षिण कोरिया जैसी टीमें हिस्सा ले रही हैं, और भले ही बड़ी क्रिकेट ताकतें इसमें न शामिल हैं लेकिन जापान के लिए टूर्नामेंट किसी बड़े मौके से कम नहीं है। मैदान पर मौजूद 34 साल के स्थानीय युवा आकिमासु मैच देखने पहुंचते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने क्रिकेट का नया नाम पहली बार बच्चों के मशहूर ऑस्ट्रेलियाई कार्टून ब्लूई में सुना था। मैच देखते हुए नियमों की किताब पलट रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे खेल पूरी तरह समझ नहीं आ रहा लेकिन देखने में काफ़ी मज़ेदार है। यह मैदान जो बनाया गया वह पहले बेसबॉल का था, इसलिए बाउंड्री लाइन के पास अब भी पिचर का छोटा टीला दिखाई देता है। मैदान की पिच तैयार करने की जिम्मेदारी श्रीलंका के अनुभवी क्यूरेटर असिता विजय सिंगे के पास है, जो पल्ले केल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच भी संभालते हैं। आयोजकों का कहना है कि यहाँ की पिच पाकिस्तान जैसी होगी, जहाँ गेंद उछाल भी लेगी और स्पिन गेंदबाजों को मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों, खास खास में हमने फीफा वर्ल्ड कप की बात की और जापान में क्रिकेट कैसे लोकप्रिय हो रहा है ये भी बात की, और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, और चलते चलते खेल जगत की कुछ खास खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने बुधवार को जारी आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजों की सूची में 8वें और 9वें स्थान पर रहे, जबकि इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान जो रूट 880 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। जायसवाल के 750 अंक हैं, गिल को एक स्थान का फायदा हुआ है और उनके 730 अंक हैं। हैरी ब्रुक की सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का नंबर आता है। भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है। टीम ने अपनी पिछली सीरीज स्वदेश में नवम्बर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। एशिया

नंबर एक और विश्व रैंकिंग में छठे नंबर के ट्रैप निशानेबाज जोरावर सिंह संधू को इस वर्ष के आखिर में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की संभावित शॉटगन टीम में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह देश के शीर्ष ट्रैप निशानेबाजों में एक हैं और उन्होंने पिछले वर्ष विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रीय चैंपियनशिप और घरेलू चयन ट्रायल के दौरान जोरावर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप फाइनल्स की तैयारी में व्यस्त होने के बावजूद उनके लिए इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य था। राष्ट्रीय ट्रायल में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण उन्हें एशियाई खेलों के लिए संभावित टीम में जगह नहीं मिली। वह एक महीने पहले तक विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर थे। जोरावर ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। भारतीय वुशु टीम ने 11वें साडा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। महिला खिलाड़ियों के 6 सदस्यीय दल में इन दोनों स्वर्ण पदकों को जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह अस्मिता खेलो इंडिया महिला लीग के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। सीमा सुरक्षा बल की एथलीट शिवानी ने महिला 75 किलोग्राम वर्ग में अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए रूस की प्रतिद्वंदी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अर्पणा ने भी 52 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए 2रा स्वर्ण पदक हासिल किया। दोनों ने ब्राजील में आयोजित विश्व वुशु में रजत पदक जीते थे। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन दिग्गज खिलाड़ियों को शिकस्त देने वाली साक्षी चौधरी, जादूमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल ने शुक्रवार को चयन ट्रायल के अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। कड़ी स्पर्धा और वजन वर्गों में फेरबदल के बीच इन मुक्केबाजों ने कोटा हासिल किया। ट्रायल के दौरान कई मुक्केबाजों ने सीमित वजन वर्ग में जगह बनाने के लिए अपना वर्ग बदला। इनके साथ विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता परवीन हुड्डा, सुमित कुंडू, अंकुश और कपिल पोखरिया भी ग्लासगो और जापान जाने वाली टीम में शामिल होंगे। पाकिस्तान ने फातिमा सना की अगुवाई में इंग्लैंड और वेल्स में अपने अगले महीने होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इस टीम में 5 ऐसी खिलाड़ी हैं जो पहली बार इस वैश्विक टूर्नामेंट में उतरेंगे। ऐमान फातिमा, नतालिया परवेज, रामी शमीम, सायरा जबीन और तस्मिया रुबाब पहली बार महिला T20 विश्व कप खेलने जा रहे खिलाड़ियों में शामिल हैं। पाकिस्तान अपना विश्व कप अभियान 14 जून को बर्मिंगम में भारत के खिलाफ मुकाबले से शुरू करेगा। वेलबन सेंथिल कुमार और जोसना चिनप्पा की शीर्ष वरीय जोड़ी ने तीसरी HCL राष्ट्रीय युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में अभय सिंह और रतिका सिलान को 11-7, 11-9 से हराया। सेंथिल कुमार ने अभय के साथ मिलकर फाइनल में राहुल बैठा और सूरज कुमार चंद को 11-8, 11-5 से हराकर लगातार तीसरे वर्ष पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया। बायर्न म्यूनिख ने हैरी केन की हैट्रिक की मदद से कोलोन को 5-1 से हराकर बुंडेसलीगा 2026 का खिताब अपने नाम किया। टीम ने 122 गोल का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले बुंडेसलीगा में एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी बायर्न के नाम था। टीम ने 1971-72 में 101 गोल किए थे, जब फ्रांच वेकेन बायर और गेर्ड मोलर जैसे दिग्गज खिलाड़ी क्लब का हिस्सा थे। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए सीजन की चौथी हैट्रिक लगाई। उन्होंने इस सीजन में कुल 36 गोल किए। हालांकि वह रॉबर्ट लेवांडोस्की के 41 गोल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने से 5 गोल पीछे रह गए। बायर्न म्यूनिख की तरफ से इस मैच में टॉम बिशोप और निकोलस जैक्सन ने भी गोल किए। कोलोन पर बड़ी जीत के बाद खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने स्टेडियम में जोरदार जश्न मनाया। इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अपने दोस्त आमित को विदा दीजिए। नमस्कार।

श्रोतो आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 4:35 से आप सुनेंगे सांझ सरगम युववाणी। चर्चा होगी ईमानदारी से करें अपना कार्य, इतिहास में आज का दिन। प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे, श्रमिक लोक कार्यक्रम। चर्चा 90 साल की युवा आवाज, कल आज और कल। औद्योगिक विकास में हरित सोच का समावेश। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार किसान वाणी कार्यक्रम। 6:02 से आप सुनेंगे चर्चा। खेतों का नियमित भ्रमण करें, गर्मी में दुधारू पशुओं का प्रबंधन, नई उम्र की नई फसल। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की हमारी दुनिया। चर्चा डिजिटल शिक्षा की ग्रामीण चुनौतियां। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार। 7:11 से आप सुनेंगे जिले में आजकल आदिवासी अखड़ा। 7:15 से आप सुन सकते हैं। प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। रात्रि 7:45 अंग्रेजी वार्ता, वॉइसेस फ्रॉम द माइंस, पीपल, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। वार्ताकार केसी जैन, प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। रात्रि 8:00 रजनी गंधा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 8:30 सुर्खियों में

रात के 10 बजे गूंजे झारखंड, स्वर यात्रा के 80 वर्ष पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। वाचन स्वर होगा संध्या नीलिमा टोपनो का, प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। रात्रि 10:30 से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, सारंगी पर राग पुरिया कल्याण, उस्ताद शबरी खान से। तो श्रोताएं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम बैंड के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4:35 हुए हैं। पेश कार्यक्रम सांझ सरगम। रितेश का नमस्कार।

वाकई दिल से निकली आवाज दिल तक पहुंचती है, चेहरे में क्या रखा है। आप सुन रहे थे सलामी फिल्म में कुमार शानू और आशा भोसले को। अगला नगमा फिल्म घायल से हूं।

जब प्यार किसी से होता है फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और कुमार सानू को। ये कार्यक्रम सांझ सरगम कार्यक्रम ही संपन्न होता है साथियों, हृदय आपको करता है नमस्कार। श्रोताओं हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, शाम के 5 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक।

0: क्षेत्रीय मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची के होटवार जेल में बंद महिला कैदी के यौन उत्पीड़न मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। झालसा की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर जस्टिस एसएन प्रसाद ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट के आदेश पर एक बड़ी जांच टीम तुरंत बरसामुंडा केंद्रीय कारागार पहुंची और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने लोकभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने रांची से मुंबई के लिए प्रतिदिन रेल सेवा और नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेन शुरू करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने रांची लखनऊ रेल सेवा को भी शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया। बोकारो स्थित दामोदर नदी के बरवा घाट में आज नहाने गए दो स्कूली छात्र डूब गए। एलएच आजाद नगर के रहने वाले तीन छात्र स्कूटी से नदी पहुंचे थे। गोताखोरों की मदद से छात्र विष्णु का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि लापता छात्र शनि की तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांडे थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह अपराधी लोगों को फर्जी लिंक भेजकर ठगी करता था। इसके पास से दो मोबाइल और दो सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। राज्य में अगले 7 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर गोल शॉटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। सांसद ने टीम के सदस्यों का उत्साह बढ़ाते हुए 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता। होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा होगी गर्मी के मौसम में मवेशियों की देखभाल। होलो गीत सुनिएगा चंद्रमोहन पिरुआ और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता होगी कम जगहों में सब्जियों की खेती कैसे करें। भेंटवार्ताकार होंगे ब्लास्टर पूर्ति और इनसे बातें करेंगे डोगरो बुड़ेवली। संथाली लोकगीत का आनंद लीजिएगा मातंग हांसदा और साथियों के स्वर में। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर सुनिए संथाली कार्यक्रम जिसमें लांगड़े लोकगीत होगा मातंग हांसदा और साथियों के स्वर में। दोंग लोकगीत होगा सोना मुर्मू और साथियों के स्वर में। साथ ही मिशन वात्सल्य योजना पर आपको जानकारी दी जाएगी। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनते हैं श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। 8:00 होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा सम्पन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के उस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। पहला गाना हमने लिया है फिल्म जहां आरा से। गायक कलाकार है तलत महमूद और लता मंगेशकर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700

है फिल्म बहना से, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। क्षमा करेंगे, अगला गीत हमने लिया है बहना से, फिल्म और गायक कलाकार है तलत महमूद और आशा भोसले।

अभी आपने सुना फिल्म वो कौन थी का गाना, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म सराबी का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोता आज सुन रहे थे एक ही संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मणिगोप और
1: डोबरो बुढ़े लितकिन पहते
0: जोहार। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। डोबरू जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: या अबे नो ऐसो पुरे तुमान ती सिबिल जोहार चासगिया को तिसिंग अलिंग आशा डोबरू बुढ़े लितकिन पहते ऐसो बुगिन बुगिन सिया सिबिल जगर को लिंग अगुदार तदा चिलके तिसिंग खास करम रिया सूची में ना मियत मियत तेसु बुगिन सिया सिविल जगर कोंडो बुगिन बुगिन संदेश को लंग आयम बेरी को।
0: बिल्कुल डोबरो जी, इन दिनों गर्मी भी काफ़ी बढ़ रही है, तो ऐसे में हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: या
0: और हमारे किसान भाई बहन पशुपालन का भी कार्य करते हैं, तो ऐसे में पशुओं की देखभाल भी बहुत जरूरी है।
1: या
0: कृषि के साथ पशुपालन आय का काफ़ी अच्छा स्रोत है। इससे हमारे किसान भाई बहनों को काफ़ी सहायता मिलती है। इनसे खाद मिलता है जिससे फसलों का जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा होता है। हम जैसे देख रहे हैं धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में अगर हमारे किसान भाई बहन अगर जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो इससे पशुओं को नुकसान पहुँच सकता है। इसके साथ ही जो दूध देने वाले पशु हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इस मौसम में अधिक गर्मी के कारण पशुओं का जो श्वसन गति है वो बढ़ जाता है और पशु हाँपने लगते हैं। इससे उनके मुंह से लार गिरने लगती है। शरीर का तापमान बढ़ने के कारण मवेशी खाना पीना छोड़ देते हैं। पशु कमज़ोर होने लगते हैं और दुधारू पशु कम दूध देते हैं। इसके साथ ही गोबर में भी कमी आ जाती है। इस तरह के अगर लक्षण दिखते हैं तो हमारे किसान भाई बहन पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले। साथ ही जो हमारे पशु डॉक्टर हैं उनकी सलाह पर ही उनका सही उपचार करें।
1: ऐसो सारे का जी चाष्ट्रज्ञ को आश्रमती हिंदी आयम तकिन जगर अटबु है नैन जेटे असड़ रे अब उरी मेरंग को ओकन को ते अब ओते सर चास बास बो ले लेता ना देंगा तना को इनको नेलकन इमितेंगु नेलकोते आदर करा। ऐसो पूरे जेटे लोलोते किली की सुमरिया अब बोमबुरी हसो लेकर आको कू मंदा लेकर आको सुलुयो आको ले को गावा आंडो बले सिटीएन मेरों को आको हन को बुगते काको नुनुआ को आंडो जीवन जेके हसीडो लेकर हसो को निमित्त नाम को इनको ऐसो ना बार सिंह नेल को तना उरी मेरों को गुनों ऐसो चितना करना जदि बुगिन बुगिन धामकुम करियो ची हाड़ा करियो को जीवन को गोया ना को एन दस पूरे लोस्कान को बाबा एना मनते चास गया को मर अब उरी मेरों सिम सुकुरी को लगे नेको बो नेल रखा को का समय रे दा को बो इमा को हरा चारा बो इमा को का अंडो उम्बुल को रे बो तल को का जेटे जेटे काबो होनर एरी को का आ आ कानो को गोटा मोली दा को नामे तने चिका को नामे तना तेतांग को ना अबुगे मनमी को निमिन बो तेतांग आने को ते दा नुई के सुकु को ओकनता बांधा गाड़ा को अंजडा कानो दा बुगिन सपा दा का को नामिए डाकू रिया दा को नु के ता साजी को हासु को उंडो अको चितन रे एन द हासुते निमितंग रे ना आशा माने ते किंका जे के लका जरूर अबो अको डॉक्टर को तारे पशु डॉक्टर को हतो करे मिना को सर होना रखो जो का को हासु एन रे मारबो रे रानो एरिको का।
0: बिल्कुल डोबरो जी, और इसके साथ ही जो चारा है हरा चारा

0: पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी इस गर्मी के मौसम में हरी चारे की समस्या आ जाती है, तो ऐसे में पेड़ की पत्ती, आम की पत्ती, बबूल की पत्ती, जामुन की जो पत्ती है वो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही जो संतुलित आहार की भी व्यवस्था हमारे किसान भाई बहन करें और पशुओं को हमेशा छायादार और हवादार स्थान में ही बांधें और उनके जो पीने का पानी है वो साफ़ सुथरा पानी उन्हें दें तो काफ़ी अच्छा है।
1: आशा जी अबो ओकोना बो मांडी ता अबो मनिया ना दो माण बात रे माण पानी बो मनिया एने ना बसी रियो चे ओकन ता अबो धूल उंडी ये
0: बिल्कुल
1: एंदा आको नूर रे आको इसो बुगेले का होमो रिया गे टाइवा ओंडो जेटे हासु कोयते को पुयुरु आको बुगिनो आको।
0: बिल्कुल डोबरू जी, और इस चर्चा के बाद अब हम सुनते हैं ये संदेश।
2: जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: किसान भाई बहनों, अब हम आनंद लेते हैं हो लोकगीत का, चंद्रमोहन बिरवा व साथियों के स्वर में।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिल हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत

0: 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
1: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: फसल बीमा का,
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं कम जगहों में सब्जियों की खेती कैसे करें। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं ब्लास्टर पूर्ति और उनसे बातचीत कर रहे हैं डोबरो बुड़ियोली।
5: ना हतो अंगारडिये हत रेलिंग बेटा ना तांतनगर पीड़ी जमुलाय रे मेनाते अंगारडिये हतो रे चासी आग्या किन अबेन सुपुरा अनुभव मेना एंदो अबेना उपरुम जगरता बेन नुतुम केली अंडो हतो पोस्ट ऑफिस
6: अलिंगा नुतुम दो ब्लास्टर पूर्ति केली दो पूर्ति एनेते हतो दो अंगारडिये
5: डागोड़ा
6: पोस्ट ऑफिस कड़ी टंगर
5: तांतनगर
6: ब्लॉक
5: ऐसो ना सर या कजे ब्लास्टर पूर्ति तिकिंग अबेन लो जगरती विषय तो ना गेता ना आंगन बगीचा में साग सब्जियों की खेती कैसे करें। अब वारिया बकाई को रे आ उतु को चिलिक बो चासे नो नेत चिलिक न लपको नेल नमो
6: नेन रे जोका जोकन जगर गे अब जब रोय रोया बु जा एकदम ये रे सब्जी रे कबो दुकुरंगा हुआ
5: या
6: एक तो इनका भी रुवाया चीज जो का भी रुवाया रहे इन्हें जमो का भी चबाया उन्हें फिर आकर नहीं थी हुआ हुआ इमिन जोर पैदा मिला जो कोई लिखन जगह रखे
5: या
6: जैसे 5 फीट 6 फीट रहे दूर रहे हम 3-2 टमाटर हम रुवा के डा
5: या
6: इन दो आमा इन्हें हाइब्रिड हम रुवा के रहे आमा इन्हें रहते 70 किलो 80 किलो जो हुआ
5: या
6: अच्छा नहीं तो मल्ची में रुवा के डा 4-5 टू मल्ची कम करेंगे टमाटर कम करेंगे बैंगन 3-4 टू में रुवा के डा इन्हों कम करेंगे भिंडी 5-6 टू में रुवा के डा इन्हें कम जम दई है रे तो मलानो 5-6 टुम रुआ इनो कम जम दई है नेन रे बन्या दो वा बकाइरिया बागान को मिता
5: अच्छा ब्लास्टर से किन नाव का जी बन चीने लेकिन गामा दिन को रियो ची जेट दिन रियो ची रबंग दिन रियो वा बकाई तला रिया बागान रे बकाई चुरी कन रे नो दारिया सुविधा मिना रदो ऐसो पूरे गए बगन दे हुआ मैं दो नेलेकन दी पिलंग रे आयर दो वा ता करियो सुकुरियो का करोरियो करेला जुनीरियो को रांज नो ता को वा निमिर निमिर वा करे नई इरिके ते सुकु का करु को रांज और कप्ता ते जो तन लेकना को चिकते का निल नमो तना
6: इमिन जो को लड़ियर ने ना अबू हो को इन इटा दिसमेतिया ये को जम सबे है ना आयर दो आयर दन अदर हाट गमरी पाए थे आप उन्हें मिन टमाटर को जो नैन सीजन रहे
5: इस
6: सस्ता जो बंगाल को सप्लाई है ट्रेन को सप्लाई है ट्रक हो जुए ना तो इनको कुलांडी चे भाई ना इम जो कोई लेकर मेहनत लगे अब वह को काको काको जो कल कर आगे काको दाइए
5: या
6: या इम जो कल क्या पार्टी के रह गया एकदम ची एकदम

0: 5 महीने 6 महीने का खरीद रहा है सब्जी।
1: अच्छा ना अभी ना बकाई रे ने नलक बा को ने लो तना डो ने नहीं होती अलकना को ना निंता रे चिकन चिकन है को बेन जो तिया दारू को अमरूद को मन लो तना सो किसम अभी ना ने वा बकाई चावरा रे मन लका वा बकाई रे अबन चिना चिना को बेन बागना कटाना
0: अमरूद को लिंग रोतरा नींबू को लिंग रोतरा ने ते थमूल गा दारू को लिंग रोतरा बिना बिना मेहनत ते पैदा होतिया को ᱱᱮᱛᱮ ᱠᱩᱪ ᱡᱚᱠᱟᱞᱮᱠᱟ ᱩᱞᱤ ᱠᱟᱞ ᱢᱤᱞᱤᱝ ᱨᱩᱣᱟᱱᱚ ᱛᱟᱫᱟ ᱱᱮᱛᱮ ᱛᱮᱨᱯᱟᱨᱟᱱᱚ ᱵᱟ ᱠᱚᱞᱤᱝ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟᱫᱟ
1: ᱱᱮᱛᱮ
0: ᱱᱟᱛᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱮᱞᱤᱝ ᱨᱩᱣᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱞᱤᱝ ᱠᱚ ᱥᱤᱥᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱨᱩᱣᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱡᱚᱱ ᱡᱚᱠᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞᱮᱭᱟᱱᱟ
1: ᱭᱟ
0: ᱨᱩᱣᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱴᱟᱢᱟᱴᱟᱨ ᱠᱚᱞᱤᱝ ᱨᱩᱣᱟᱭᱟ ᱢᱟᱞᱪᱤ ᱠᱚᱞᱤᱝ ᱨᱩᱣᱟᱭᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱᱮ ᱟᱞᱤᱝ ᱨᱩᱣᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱟᱞᱤᱝ ᱠᱤᱨᱤᱝ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱞᱚᱠᱟᱞᱤᱝ
1: ᱜᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱛᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱚᱣᱟᱭ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱞᱚᱢᱯᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱚᱣᱟ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱛᱟᱨᱮ ᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱮᱥᱰᱟ ᱠᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱚᱜ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱢᱤ ᱥᱟᱸᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮ ᱵᱟᱨ ᱥᱟᱸᱡ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮᱭᱚ ᱪᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱨᱮᱭᱚ ᱩᱛᱩ ᱤᱛᱤᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱢᱤ ᱵᱟᱨ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱪᱟᱣᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱫᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱤᱧᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱟᱥᱤᱭᱟ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱵᱤᱥᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟ ᱵᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱟᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱛᱮ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱛᱮ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱢᱤᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱡᱟᱭ ᱡᱟᱭᱥᱮ ᱵᱤᱱᱫᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱛᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱮᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱞᱪᱤ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱛᱟ ᱱᱮᱯᱟᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱴ ᱵᱟᱨᱮ ᱦᱟᱴ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱟᱭᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱢᱢᱟ ᱜᱮᱵᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱛᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱫᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱫᱟᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱠᱟᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱚᱠᱚ ᱡᱚᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱤᱱᱫᱤᱭᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱣᱟ ᱴᱟᱢᱟᱴᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱣᱟ ᱵᱟᱭᱜᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱣᱟ ᱯᱩᱞᱩ ᱱᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱵᱤᱱᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱩᱰᱩᱠᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱭ ᱠᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱠᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ
1: ᱠᱤᱨᱤᱧ
0: ᱡᱚᱢᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱢᱮᱠᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱛᱮ ᱠᱟᱵᱩ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱫᱟᱭᱮ ᱩᱞᱴᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱮ ᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱪᱟᱹᱴᱩ ᱱᱚᱜ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱚ ᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱞᱪᱤ ᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱮᱞᱟ ᱢᱟᱞᱪᱤ ᱨᱮᱭᱚ ᱡᱚᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱣᱟᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟᱞᱪᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱤᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱢᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱪᱟᱹᱴᱩ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱮᱱ ᱞᱮᱞᱟ ᱠᱟᱰᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱜᱮ
0: ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱞᱟ ᱠᱟᱰᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱨᱥᱤᱱ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰᱮ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱵᱚᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱤ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱛᱚᱨᱛᱟᱭ ᱞᱮᱞᱵᱟᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱛᱮ ᱤᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱪᱟᱹᱴᱩ ᱵᱟᱞᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱞ ᱮᱞ ᱨᱮᱜᱟᱣᱟ ᱡᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱱ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱪᱟᱹᱴᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱚᱛᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮᱧ ᱨᱩᱣᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮ ᱯᱟᱭ ᱫᱟᱫᱟᱧ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱥᱚ ᱟᱪᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱞᱮᱞᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱠᱟ ᱩᱲᱩᱜ ᱞᱮ ᱛᱮᱨᱚ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱱᱮᱞᱠᱮ ᱛᱮ ᱪᱟᱥᱮᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱤᱧ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱞᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱵᱮᱱ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ
0: ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱤᱫᱤᱧ ᱛᱮ ᱡᱚ ᱟᱹᱧ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱹᱧ ᱯᱟᱴᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱹᱧ ᱯᱟᱭᱫᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱮᱸᱜᱟ ᱢᱟᱞᱪᱤ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱞᱚᱠᱚᱧ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱟᱴᱤ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱞᱟᱵᱷ ᱠᱚ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟ ᱡᱚᱠᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱥᱨᱟ ᱵᱟᱨᱚᱥᱟᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱴᱟᱣᱤᱧ ᱛᱟᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱥᱨᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱚ ᱵᱟᱲᱤᱝ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱛᱮᱞᱟᱝ ᱡᱚᱣᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱨ ᱡᱚᱣᱟᱨ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱨ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱞᱤᱝ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱡᱚᱣᱟᱨᱟ ᱵᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱡᱚᱣᱟᱨᱟ
0: ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ
2: ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱷᱟᱭ ᱵᱮᱱᱚ ᱟᱵᱷᱤ ᱦᱚᱢ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮ ᱨᱮ ᱛᱷᱮ ᱠᱚᱢ ᱡᱟᱜᱟᱦᱚ ᱢᱮ ᱥᱚᱵᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱠᱟᱭᱥᱮ ᱠᱟᱨᱮ इस विषय में जानकारी दे रहे थे ब्लास्टर पूर्ति और उनसे बातचीत कर रहे थे डोबरो बुड़ियोली।
3: किसान मानधन योजना
4: मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से ना

0: इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आद्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
4: नैन संदेश को तयों या तुंडूरे इलामियंस संताली सिविल दुनत वो रासलन मातां हस्ताउंडो जुड़ी को पाए थे।

0: किसान भाई बहनों, इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आशा मनी गोप और
1: डोबरो बुडिल तकिन पैते
0: जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन और डीआरएम करुणानिधि सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र 2026 से एक वर्षीय और दो वर्षीय स्नातक

2073 के नए पाठ्यक्रम और क्रेडिट रूपरेखा पर चर्चा की गई। गढ़वा जिले में ईंधन काला बाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। SDM संजय कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने सोनपुरवा से 13 अवैध रसोई गैस सिलेंडर जब्त किए। वहीं लातदाग गांव के पास ऊंचे दामों पर गैलन में पेट्रोल डीजल बेचने की शिकायत पर एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। रांची के मनन विद्या मंदिर में यातायात पुलिस ने 500 से अधिक NCC कैडेट्स के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों, हेलमेट के महत्व, साइबर ठगी से बचाव और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। उपनगर आयुक्त पारुल सिंह के नेतृत्व में इमली चौक से आशियाना चौक तक सर्विस लेन पर बने अवैध चबूतरों और निर्माणों को JCB से ध्वस्त किया गया। धनबाद में नागरिक एकता मंच ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आउटसोर्सिंग कंपनी पर लोधना क्षेत्र से लोगों को जबरन हटाने का आरोप लगाया। मंच के सदस्य बिहारी लाल चौहान ने कहा कि समाज सेवी कुंदन पासवान पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और मोबाइल बरामद किए हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱩ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ
1: भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बेटा क्रांति बेसरा आले नवागे नेहर मेना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब ओडा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
6: तुम लोग बुरंग सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुर मिना यापा मेरे तपा मेरे वा बेटा का
7: अं तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अं हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मुनि में उड़ी उड़ी ने बागिया तो किन दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गई अंदर जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेरे मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: ᱥᱤᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱯᱩᱨᱱᱚᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱹᱱᱡᱩ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱠᱤᱱ
9: ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱚᱭᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱯᱩᱨᱱᱚᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱵᱷᱮᱴᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱭᱩᱴ ᱵᱟᱨᱮᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱤᱧ ᱯᱤᱮᱪᱰᱤ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱤᱢ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱨᱟᱠ ᱨᱟᱠᱷᱟᱣ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱤᱥᱟᱭᱤᱰ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱥᱤᱢ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱜ ᱵᱚᱱ

0: हवा चलने की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस द्वारा नक्सली एवं उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में छिपादोहर थाना क्षेत्र के कुरुमखेता जंगल से पुलिस ने नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में मनोज लोहरा एवं महादेव सिंह शामिल हैं, जिनकी निशानदेही पर एक AK-47 राइफल समेत 3 हथियार एवं गोलियां बरामद की गई है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इस क्रम में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो है महादेव सिंह और मनोज लोहरा। उनके पास से JJMP के जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उनमें एक AK-47 और मैगजीन के साथ और 88 राउंड गोली के साथ और दो SLR राइफल कुल 230 राउंड गोलियों के साथ, इसके साथ वॉकी टॉकी, पाउच, मैगजीन इत्यादि अन्य सामान भी इसमें जब्त किए गए हैं।
1: लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में आशु पार्टी का प्रमंडल स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर आशु सुप्रीमो सुदेश महतो समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी वक्ताओं ने झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली पर विरोध जताया। मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि
3: हमारे युवा इकाई के लतेहार, पलामू और गढ़वा इकाई के जो प्रखंड स्तर के जो प्रभारी हैं उनके साथ आज संयुक्त एक बैठक थी और ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की तरह था और आने वाले कार्यक्रम को किस रूप से आने वाली राजनीतिक चुनौती, इस राज्य के गठन के उद्देश्य और आगे भविष्य में हम किस रूप से संगठन को और धारदार बनाएंगे, इस संदर्भ में आज चर्चाएं हुई है।
1: लातेहार जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला प्रशासन अफीम की खेती एवं मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन सभी संदिग्ध जमीनों का सत्यापन करा रहा है जहां अफीम की खेती होती है। इसके लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए गए हैं। लातेहार जिले में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों एवं उग्रवादियों के परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समस्याओं से जुड़े 59 आवेदन भी आए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी के अंतर्गत लातेहार जिला में कुल 51 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। आसपास के जिलों से भी लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्र में हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम किया पिछले 4-5 दिनों में। आज इसका आखिरी चरण है जो लातेहार में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। कुल 16 आत्मसमर्पित नक्सली और उनके परिजन यहाँ पर आए हैं। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जितने भी देय लाभ हैं उनके बारे में इनको अवगत कराना।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में SIR के नाम पर वैध वोटरों का नाम काटे जाने की प्रक्रिया का विरोध किया गया। ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए बूथ लेवल एजेंट एवं 10 सदस्यीय कमेटी बनाने की चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ साहदेव ने कहा कि
4: झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा आज जो बैठक रखी गई है निश्चित रूप से SIR से संबंधित मेन एजेंडा हमारा और उस समिति का पुनर्गठन है। हम लोग माटी को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, भूतों पे मुस्तैदी के साथ खड़े मिलेंगे और हमारा जो BLA है वह BLO के समकक्ष चलाते हुए वैसे मतदाताओं को एक तरीके से सहारा प्रदान करेंगे जिनको डॉक्यूमेंट्स के अभाव में या बहुत सारा चीज को बोल करके उनका नाम काट दिया जा रहा है।
1: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
0: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हो रहे हैं। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है, चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंधराठी जिला मधुबनी बिहार से शोभिकांत झा सज्जन, मुखिया जी हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लक्की सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन, मास्टर एस के सज्जन, वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, मधुर लकड़ा, नताशा और बेबी, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन, मीना पवन, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, शुभम गोप। बरियातू रांची से नितेश मेघा, आकांक्षा और अरब, उत्तराखंड रुद्रपुर से राजीव, सुमन और आदित्य, बड़ा बाम्बू सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा और सीमा, ग्राम केलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश, बनवाली बेसरा, अन्नो, सिद्ध कुमारी और पूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पगला कहीं का ये गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद आप सबों की है। खरसावां बड़ा बाम्बो से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो समस्त परिवार के सदस्य, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, छोटा निमरी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल, ऋतिक, चांडिल ग्राम हरुड़ी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, मनोरमा और दिनबंधु, मोहरडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविबारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नू, तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान और निक पानी प्रधान। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म करण अर्जुन का ये गाना, आवाज़ें कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की है।

अगली पसंद आप सबों की है, गोल्डन रेडियो लिसनर क्लब राज पैलेस मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, राजीव वर्मा, रितेश सोनी, दुधनाथ भारती, पारुल पल्लवी, शैलजा सोनी, रविदास मंदिर हकीकतपुरा मऊ यूपी से मुन्ना स्वर्णकार, सोनू स्वर्णकार, आर्यन स्वर्णकार, लिटिल पीहू स्वर्णकार एवं पूरा स्वर्णकार परिवार, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, भाटपारा दत्रेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू, तूरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी, आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, बिल्दार आसमा, अकरम आसमा, बिल्दार उल्लाह आसमा, बिल्दार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी का ये नगमा, आवाज़ें किशोर कुमार की है।

अगली पसंद है आप सबों की, सुनना चाहा शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंडा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, परी, मुस्कान, नबीहा। बड़ी बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, काशिफ मीना, हासिम मीना। महाली साई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमांति महाली, यशोदा महाली, शांति महाली। गांव कोयडा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वशीम नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां, राजनंद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी, कुचाई बिद्री से केपी सेठ सोए, सरिता सोए, दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी, ग्राम सुराबेड़ा से बासिंग सरदार, बीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार, खसवा पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सुनवा गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मकरू आचार्य, जो जो कुड़मा से मनोज गगराई, बसंती गगराई, सोनाली गगराई, आयशा गगराई, रचना गगराई, जितेंद्र गगराई, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्लूउल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बद्रवली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राजकुमार का गाना, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

और आई सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, सरोज ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी, दुर्गाई सेलू, जिला परभनी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, चैतंग वीरक, मीका वीरक, डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये देवी, अनिष्का और तन्मय गजभिये, जोजो कुड़मा से सुकरा महतो, पीताम्बर महतो, मुरारी महतो, राजेश महतो, कविराज महतो, सुपाई साई से कर्ण प्रधान, ज्योति प्रधान, जगबंधु प्रधान, दुश्मन प्रधान, मिथुन प्रधान, बड़ा कुड़मा से सुदर्शन माली, चिगड़ू महतो, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेश तड़वी, बिटिया रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी, समस्त तड़वी परिवार, दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, काशिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, मुकुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोश, सोना बाबू सोना, FM शिवा मुंडरी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अनोखी रात। इस फिल्म का गाना, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आप सबों की पसंद पर अगला गीत। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोध, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा, साहिल कागड़ा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मणिपुरी, ददरेगी से भागवत वर्मा। पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बीबी आरजू जजोरिया। चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, सोएब खान। पोत्रा मुश्तबा खान, रऊफ भाई, साहिद भाई। गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार। ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी से बसंत बेंकुरा, सुलोचना पान, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, कल्पना कुमारी, रूपाली कुमारी, झीपी कुमारी, जयमनी, जयंती, अल्पना और नवीन। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना आवाज़ें मुकेश की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता, हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है बड़ा निमड़ी चाईबासा से, तुलसी पथिक मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लैला मजनू का ये गाना, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

अगली पसंद है पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगली फरमाइश है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म थानेदार का ये गाना, आवाज़ें हैं अमित और आशा भोसले की।

अगली फरमाइश है महोल्डिया सोनवा से, नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, संतोषी दीपक, संतोष राहुल, आयुष, अन्नु, तन्नु, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अंसुया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक और गीतेश महतो की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मृत्युदाता का ये गाना, आवाज़ें मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की है।

अगली फरमाइश है न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला निर्मला देवी अर्चना राम खुशी खुशबू अभिषेक अनीस और मुन्ना की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कभी कभी का ये गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की है।

तीपतरा डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम, डबरीपारा तीपतरा से गजेंद्र प्रताप मरकाम, सुरेंद्र कुमार मरकाम, मोहन सिंह मरकाम, मनमोहन सिंह मरकाम। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कुदरत का ये गाना, आवाज़ें किशोर कुमार की है।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता देवी, उमा कुमारी, गीता देवी, रीता देवी, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, शुभम गोप, सुमित गोप, विकी गोप, सरस्वती देवी, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, आराध्या कुमारी।

आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जाग उठा इंसान। इस फिल्म का गाना आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की है। गीत लिखा है इंदीवर ने, संगीत राजेश रोशन का है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन

0: जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम नॉर्डिक कंट्रीज इन इंडिया रोज बाय 200% इन द पास्ट डेकेड।

0: towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. The India Meteorological Department has warned of severe heatwave conditions in northern India. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heatwave to severe heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. Meanwhile, the weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala, Mahe and Lakshadweep till the 21st of this month. In cricket, the Indian men's squads for upcoming one-off test and three-match ODI series against Afghanistan were announced today. Shubman Gill will continue to lead India in both formats. Wicketkeeper batter KL Rahul has been named the new vice-captain of the test team, replacing Rishabh Pant, who has also been dropped from the ODI squad. Shreyas Iyer returns to the ODI side as vice-captain. Spinner Manav Suthar and pacer Gurnoor Brar have received maiden test call-ups, while Prince Yadav has been included in the ODI squad for the first time. Pace spearhead Jasprit Bumrah and senior all-rounder Ravindra Jadeja have been rested for the series. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 213 for 2 in 18.4 overs against host Rajasthan Royals in Jaipur when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already qualified for the playoffs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: For rabid and dangerous stray dogs to protect human life, Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहदा मौकिफ है जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत के तईं अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ़ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वज़ीर आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद 5 मुल्कों के अपने दौरे के 5वें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मजीद तफसील वजीर आजम के इटली के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके साथ गए हमारे नुमाइंदे से।
3: वजीर आजम 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले पर आज इटली पहुंचने वाले हैं। तवक्को है कि ये दौरा कई अहम शोबों में भारत इटली किलीदी शराकतदारी को नई बुलंदी अता करेगा। इम्कान है कि तिजारत, सरमायाकारी और सनती पार्टनरशिप से मुतालिक शराकतदारियों का ऐलान किया जाएगा क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी इक्तसादी वाबस्तगी को मजबूत करने और ताउन के नए शोबे तलाश करने के ख्वाहां हैं। दौरे के दौरान आला सतह के मुजाकरात के बाद ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर दाखला और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा 5 बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खत्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरका तौर पर एक साइंसी लाइहा अमल तैयार किया है।
4: बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहाँ नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहाँ के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े, भारत सरकार

0: और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।
1: इससे कबल मरकजी वजीर दाखला ने जगदलपुर में बस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, शिमाल मशरकी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दस्तकारों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में एट होम तकरीब के लिए काम करने के अपने तजुर्बात बताए और अपने हुनर को पेश करने के मौके के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दस्तकारों और बुनकरों की मदद की जरूरत पर जोर दिया ताकि उनका रिवायती फन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो खुद कफील बन सकें। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए नीट यूजी के आइंदा माह होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने हिदायत दी कि इसे पहले हुए इम्तिहान के अमल में जिन सभी कमियों की निशानदेही की गई थी उनका लाजमी तौर पर इजाला और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी जाब्तों के तहत एक महफूज, बिला रुकावट और किसी भी कमी के बगैर तरीके कार के तहत मुकम्मल होना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज जनूबी कोरिया के सियोल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दिफाई इश्तराक और कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि ये दौरा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दोतरफा ताल्लुकात और इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती अकलियती कमीशनों से जोर देकर कहा है कि वो अकलियती फिरकों के मामलात और शिकायतों से निमटने में सरगर्म रोल अदा करें। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में आज मुनक्किदा रियासती अकलियती कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के हर शहरी की बहबूद और तरक्की के तस्वुर के साथ काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली मर्तबा इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुबतला कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। अदालत ने इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज और अवाम की हिफाजत की जरूरत का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अजदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आजादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा ना हो। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज जुमेरात को फाल्टा असेंबली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात से अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। जनाब खान ने एक बयान में कहा कि उनका ये फैसला खित्ते में अमन और तरक्की बनाने की गरज से लिया गया है और उन्होंने बीजेपी की क्यादत वाली नई सरकार की जानिब से फाल्टा के लिए ऐलान किए गए खसूसी पैकेज का खैर मकदम किया। एक बयान में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जहांगीर खान के नाम वापस लेने का फैसला उनका अपना निजी फैसला है और ये पार्टी का फैसला नहीं है। अब जबकि खान इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए हैं तो अब मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दीबांशु पांडा, कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक मुल्ला और सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी के दरमियान है। रूस ने तस्दीक की है कि भारत की सदारत में इस बरस नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रूसी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में पुतिन के एक अहम सेक्रेटरी यूरी योशाकोव के हवाले से कहा कि रूस के सदर 12 और 13 सितंबर को मुनक्किद होने वाले इस समिट में हिस्सा लेंगे। एक साल से भी कम अरसे में जनाब पुतिन का भारत का ये दूसरा दौरा होगा। वो पिछली मर्तबा 23वें भारत रूस सालाना समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए थे जो दिसंबर 2025 में हुई थी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने जुमेरात तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात के वक्त गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत शदीद गर्मी की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जनूब मगरबी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में भी गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने इस माह की 21 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, क्राइकल, केरलम, माहे और लक्षद्वीप में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की सरकारी वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिले के लिए एंट्रेंस इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC के हेडक्वार्टर्स में होगा। किसी भी मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर का इम्तिहान दे रहे तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ एक क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक रोजा बैन अलाकवामी मैचों की आइंदा घरेलू सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान रहेंगे और KL राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल ODI टीम के भी कप्तान रहेंगे जबकि सुरेश अय्यर नायब कप्तान बनाए गए हैं। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर खिलाड़ी जडेजा को आराम दिया गया है। स्पिन गेंदबाज मानव सुथर और गेंदबाज गुरनूर बरार अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे जबकि प्रिंस यादव को पहली मर्तबा ODI टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट मैच 6 जून से मुलानपुर में खेला जाएगा। इसके बाद 14 जून से धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में ODI मैच खेले जाएंगे। IPL क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मैच जारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 221 रन का निशाना रखा है। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमा मौसमियात ने शिमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई भी की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Yesterday, the summit was attended by more than 250 participants from Norwegian and the Indian business and research communities. Prime Minister appreciated the growth in bilateral trade and investments following the TEPA. While addressing the gathering, Prime Minister spoke about TEPA. First, let's listen to what the Prime Minister had to say.
3: October 2025, mein, humne European Free Trade Association ke saath Trade and Economic Partnership Agreement यानी टेपा लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
2: Professor Rahul Mishra, we just heard Prime Minister Narendra Modi speaking about the benefits of this free trade agreement and how it will bring in foreign direct investment and direct employment into the economy. For the benefit of our listeners on Akashvani, could you tell us what exactly is TEPA and if you could highlight its key features?
4: This agreement, India-EFTA-TEPA, is a, of course, it is landmark free trade agreement that it has been termed by leaders on both the sides. But also, it is one agreement which is like one of its kind in many ways. Because in general, what happens in free trade agreement, which has generally has two components, which is trade in goods

0: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर हम जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32,80,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड काल में शुरू हुई ECLGS योजना को एमएसएमई के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर एनपीए संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
1: देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं 30% से ऊपर निर्यात में 48% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो
0: जी।
1: और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2,50,000 करोड़ रुपए का जो ECLGS है इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27 जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है उसमें हमें देखने को मिले।
0: अभी अगर

0: बात करें तो MSME अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
1: देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी MSME का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है।
0: जी
1: सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, इन ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है।
0: जी
1: तो अब के समय में JAM के जरिए, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है, वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है, लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन MSME के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी, और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी,
0: जी
1: अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं, उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
0: शिशिर जी, अभी आपने जेम की बात की, तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर ले, MSME संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से MSME इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है, इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
1: आपने जो तीन खास प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, चाहे वो TRDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि MSME जो एक लंबे समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं
0: जी
1: उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए, और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10ों की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़े अपने उत्पाद में विविधता लाएं और
0: जी
1: ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं, आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे या आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी।
0: जी
1: इसका फायदा क्या है, और ये जो आपने तीन खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर MSME को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है, और इन MSME को वैश्विक मंच पे अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
0: शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और MSME को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
2: विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी बढ़त, और आने वाले वर्ष का टारगेट, यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलकर $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। ये आने वाले दिनों में, अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
0: तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही, एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से MSME दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
1: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर यह हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं GST रजिस्ट्रेशन को लेकर के। GST में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड SSE हैं। अब अगर आप

0: प्री जीएसटी रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें, तो लगभग ये संख्या 66 लाख थी,
1: जी।
0: अब 1 करोड़ 60 लाख है। और इस 1 करोड़ 60 लाख में एक बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से कम है। जीएसटी की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40 लाख का कारोबार होना चाहिए, और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20 लाख होना चाहिए गुड्स के मामले में, और सेवा के मामले में 20 लाख और 10 लाख रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास जीएसटी का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका जीएसटीएन है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा जीएसटीएन है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं है,
1: आसानी होती है।
0: बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको जीएसटी का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप, अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई पर जुड़े हुए हैं, ये तो वो संख्या जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। इन संख्या के आधार पर अगर हम इन कारोबारी व्यापारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अर्थतंत्र आगे नहीं चलने वाला है। अर्थतंत्र में जब 7%, 7.5% की विकास दर की जरूरत होती है तो केवल बड़े उद्योग हिस्सेदारी नहीं करते हैं, बल्कि छोटे और स्थानीय स्तर के उद्योग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है।
1: तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्धशहरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी जीडीपी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और साथ में क्या ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है वो छोटे उद्योगों पर काफी हद तक केंद्रित की जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बढ़ावा मिले।
0: अगर आप पिछले 12 साल में योजनाएं देखें, खासतौर पे छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं, तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है
1: जी।
0: अगर आप एक महिला उद्यमी है तो स्टैंडअप की स्कीम है, जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40%, 45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा हुआ है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।
1: शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़ करके हमने काफी चीजें हासिल की हैं, उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
0: देखिए, डिजिटल व्यवस्था का दो बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो एक पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है, और कोई आपके यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता है कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, तो आपके बारे में सरकार को स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से यह पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का
1: जी।
0: अब ये ECLGS 5 की बात क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं। अब यदि वहां पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे। तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
1: जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो

0: कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता है कि आप कौन है और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है। दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
1: शिशिर जी, ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहां पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है?
0: ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता
1: है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इस तरह के प्रावधान किए गए वो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं।
0: बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं। अब जरूरत यह है कि उसी तरह की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए भी लागू किए जाएं और लागू कई किए गए हैं, उनका फायदा भी मिला। वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब 50% एमएसएमई का हो चुका है।
1: जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम गजलों का, तो आइए सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में गजल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

पंकज उदास द्वारा गाए इस गज़ल के साथ ही श्रोता हमारा आज का गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। इस कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है कोरा कागज़ से, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

0: 8700014242।
1: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का शुरू की रंग कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा